0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: क्या कहा?

0: हरी मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बुधवार 14 अक्टूबर, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें और अभी के लिए समय हुआ है समाचार का, तो आइए बढ़ते हैं समाचार की ओर।
2: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
3: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। सख्त निगरानी में शुरू हुई रात, जहां शांति भंग होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आईं। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज़्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू में करने की कोशिश में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स में बर्ग, बेजुतोंबो, एक ही नज़ारा। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू बर्मिनल सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कास्कावेल मॉल की कई दुकानों में चोरी करने गए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजुतोंबो में संयम बनाने के लिए पुलिस को टियर गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में 2 लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तड़के सुबह आखिरकार देश में थोड़ी राहत आई और अभी कर्फ्यू हटा दिया गया है। देश के 15 इलाकों में आज सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटाया गया, जो कल रात 8:30 बजे लागू हुआ। देश के इन इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया। आज दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की आपात बैठक लगाई जाएगी, ताकि स्थिति का जायजा लिया जाए और निर्धारित किया जाए कि आगे कौन से कदम उठाने होंगे। कल देश को संबोधित अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारियों के मुताबिक घृणा की भावना के साथ एक विशेष गुट इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो देश में शांति भंग करने के उद्देश्य से दहशत फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शुक्रवार रात को कॉलोव्यू में हुई घटना का कड़ा खंडन किया, जहां इलुजीतो मां को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि जो इस पुलिस अफसर ने किया वो अस्वीकार्य है, लेकिन एक की सज़ा सबको क्यों दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस फोर्स का उद्देश्य देश और जनता की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा कि इन हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाएगी, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज दूसरे दिन के लिए सभी निजी और सार्वजनिक पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक माध्यमिक, सेंट स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट MITD, मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और डे केयर सेंटर यानी नर्सरीज बंद रखे जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते यह फैसला लिया गया। आज के लिए निर्धारित परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट और हायर स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षाएं आज मॉरिशस, रोड्रिग्स और अगालेगा में निर्धारित समय पर की जाएंगी। इन परीक्षाओं में भाग लेने वालों को निर्धारित समय पर परीक्षाएं देनी होंगी। पियर्सन इडेक्सल की परीक्षाएं भी जारी रखी जा रही हैं। मेट्रो से

0: बात ठप, स्कूल बंद लेकिन एससी और एचएससी की परीक्षाएं जारी, बुधवार को लेकर जानने योग्य ये कुछ बातें। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूल बंद, विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी और जैसे कि हमने कहा एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चलेंगी लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस की सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्रैम नहीं चलेगी और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना है। निजी क्षेत्र में कंपनियों और कर्मचारियों की निगाहें अब बिजनेस मॉरिशस की सिफारिशों पर टिकी हैं जिनकी घोषणा अगले कुछ मिनटों में होने की उम्मीद है। वहीं आज शाम एक बार फिर कर्फ्यू लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय दोपहर बाद लगने वाले कैबिनेट की मीटिंग के दौरान की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की आराधना आज की जा रही है। मान्यता है कि माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। उनकी तेजस्वी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करती है। विदेश में वैटिकन की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पोपलियो 14 को फेफड़ों का कैंसर हुआ है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए सर्जरी सफल रही। 71 साल के पोप की मंगलवार को रोम के अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी की गई। वैटिकन के अनुसार सर्जरी सफल रही और इस दौरान कोई जटिलता सामने नहीं आई। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मस्करीन्स के दक्षिण में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। मात्र सुबह ऊंचाइयों पर कुछ हल्के बादल घिरा सकते हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाह रेखा के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न जाने की सलाह है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 5:40 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:11 पर होगा।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये डाल FM है, शामिल मोहतरम परवीज़ा का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सामईन खुदा के फजल व करम और रसूल खुदा ताजदार मदीना हबीब किबरिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके खैर व आफियत से हैं। सब अल खैर की मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप सभी लोगों का इस रूहानी महफिल में दिली खैर मकदम है। तो आइए मज़ीद सामीन, मामूल के मुताबिक आज की उर्दू नशरियात का आगाज़ कुरान पाक की आयत मुबारका से करें। बग़ौर बादप समात करके अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं।

बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलमबंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताबे रोशन यानी लौहे महफूज में लिख रखा है।

और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तकवियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो।

उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो।

और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं।

और मैं क्यों उस जात की परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है? क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके? तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो।

हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया।

और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे।

और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए।

0: और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी यहां तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से यह हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं।
1: सदकल्लाहु लजीम। सुभान अल्लाह, कलाम इलाही की तिलावत से सारा माहौल मुअत्तर और मुनव्वर हो गया। सामईने मोहतरम, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो मौजिज़ाना कलाम है जिसकी तिलावत से न सिर्फ रूह को तस्कीन मिलती है बल्कि दिल के जंग दूर हो जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर न खौफ है और न वो गमगीन होते हैं और हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने वालों की अज़मतें बयान करते हुए इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह हम सब को कुरान पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने की तौफीक दे, आमीन। अव्वल हम्द उस जुलजलाल का कि जिससे सुनासू है कमाल उसका, बनाया है आलम को हिकमत सू अपनी, सजाया है कुदरत सू कुदरत सू अपनी। वही ज़ात हर किस्म की हम्द सना तारीफ़ और बंदगी की मुस्तहिक हैं।

0: ही अक्स लहराए, तेरी ज़मीन पे कदम है, फलक पे है नजरें, तू ही संभलने वाला है, हम जहाँ जाएं। ये आर एम फ्री है, आप समात फरमा रहे हैं उर्दू नशरियात सबल खैर परवीज़ा के साथ है दिन के 7 बजे तक। मज़ी सामीन, आज की इस नूरानी नशिश में हम सफ़र करने वाले हैं एक ऐसी लाजवाल शख्सियत की सीरत मुताहिरा की तरफ, जिनकी ज़िंदगी मुजस्म क़ुरान पेकरे रहम करम और सरतापा खालिक अज़ीम थी, यानी हुजूर गौसे आज़म सैयदिना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि। सामईन, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की करामात और अलमी मर्तबे पर तो बहुत कुछ कहा और सुना जाता है, लेकिन जो चीज़ एक बिखरी हुई इंसानियत को सबसे ज़्यादा जोड़ती है और जो उनके कदमों की धूल को भी लाजवाल बनाती हैं, वो है अखलाक़ गौसे आज़म। उनका माफ़ कर देना, मोहताजों को गले लगाना, दुश्मन को भी दुआ देना और हर हालात में इनकिसारी और आजजी के पेकर में ढल जाना। तो आइए मज़ीद सामीन आज का बयान सुनते हैं, समात फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलत से अपने इस एपिसोड का आगाज़ करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जो मुझ पर जुमुआ के दिन और रात में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो उस दुरूद पाक को मेरी कब्र में यूं पहुंचाएगा जैसे तुम्हें तहाइफ पेश किए जाते हैं। बिला शुबा मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी हयात में है। सुभानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहि वसल्लम। आज हम जिस उनवान पर गुफ्तगू करेंगे वो सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अखलाक है। याद रखिएगा, इंसान की असल पहचान उसका लिबास, उसका मनसब, उसकी दौलत और उसकी शोहरत नहीं होती, बल्कि उसका अखलाक, उसका किरदार, उसके ताल्लुकात, उसका लेन देन, उसका गुफ्तगू का अंदाज़, उसका बर्ताव, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो किसी भी शख्स की पहचान होती हैं। कोई बहुत मालदार शख्स भी होगा तो मालदारी को लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, बड़ा पैसा है उसके पास, लेकिन साथ ये भी कहेंगे कि मुँह सीधी तरह नहीं लगाता, बात करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, बड़ा मुतकब्बर आदमी है, ये है वो है। तो लोग माल की तारीफ करें ना करें, लेकिन उसकी ये वाली बुराई ज़रूर करेंगे। तो शख्स की, किसी इंसान की, उसकी ज़ात की जो असल पहचान होती है उसका अखलाक होता है। पैसा तो किसी के पास किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन असल जो इंसान का अपना है वो उसका अखलाक होता है। पैसा एक गैर चीज़ है, अगरचे मिल्कियत में है मगर गैर चीज़ है। हकीकत में जो इंसान की अपनी जो एक चीज़ होती है, जो उसको पेश करने की ज़रूरत है, जो हकीकत में उसकी पहचान बने, वो उसकी गुफ्तगू होती है, वो उसका बर्ताव होता है, वो उसका ताल्लुकात होते हैं, उसका अपना किरदार होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इंसान को बड़ा लिबास नहीं बनाता, उसका अखलाक और किरदार बनाता है। और सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का अखलाक, आपका किरदार, आपके ताल्लुकात, अपने चाहने वालों से अच्छे अंदाज में पेश आना, उनके साथ खूबसूरत गुफ्तगू करना, ये आपके अखलाक के बुनियादी तरीन अनासिर में से ये चीज़ें थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी के अंदर माआज़ल्लाह गालम गलोच नहीं थी, दिलाज़ारी नहीं थी, लोगों को सताना नहीं था, लोगों को तकलीफ़ देना नहीं था, रिश्ते तोड़ना नहीं था, अपने किसी करीबी दोस्त के साथ मुनाफ़क़त करना नहीं था, बेवफाई करना नहीं था, हसद करना नहीं था, मिलजुल के चलना, मोहब्बत से चलना, अख़ुवत से चलना, हर एक को उसका हक़ देना, इज़्ज़त करना, एहतराम करना, अच्छे ताल्लुकात रखना, ये आपकी ख़ूबी थी, आपका खासा था। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से अगर महज ये तसव्वुर है कि आप एक आलिम थे, एक आबिद थे, जाहिद थे,

सूफी थे, तो महज यही तसव्वुर रहे कि नहीं नहीं आप एक साहिब करामत बुजुर्ग थे, बिल्कुल थे, मगर आपकी ज़िंदगी के अंदर आपका अखलाक ऐसा था कि आप आला तरीन किरदार के मालिक थे। आपकी शख्सियत का निखार ज़माना जानता था, आपके ताल्लुकात की खूबसूरती ज़माना वाकिफ़ था, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये सब भी था। तो आपकी ज़िंदगी जो हमें दर्स देती है, अगर उसको पढ़ा जाए, उलमा ने आपकी सीरत को लिखा है, अगर उसको पढ़ा जाए तो वो किताबें हमें बताती हैं कि आपके अखलाको किरदार कैसा था, आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपके जुमला उमूर ज़िंदगी मामलात और तमाम चीज़ें ये कैसी थी। हमें उससे सबक मिलता है। आपकी ज़िंदगी में सखावत है, आपकी ज़िंदगी में हमदर्दी है, आपकी ज़िंदगी में लोगों की मदद है, आपकी ज़िंदगी में किसी को माफ़ करना है, कोई ज़्यादती कर भी दे, कोई परेशान कर भी दे, कोई तकलीफ़ दे भी दे, तो उसको माफ़ करना, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। और ये वो चीज़ें हैं जो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत से सीखने की हैं। करामात, आपका जुहद, आपका तकवा, सुभानअल्लाह। मगर हमें ये चीज़ें भी जानने और समझने की ज़रूरत है कि सखावत, हमदर्दी, गमगुसारी, मेल जोल अच्छा, लोगों से अच्छे ताल्लुकात, ये आपकी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है, इसे भी समझना है। आइए इंशाल्लाह कुछ चीज़ों को आपके सामने बयान करते हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक खादिम था, आपके काम करता था, आपकी खिदमत करता था, तो आपकी बारगाह के अंदर यानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बड़ा महंगा आईना तोहफे में पेश किया गया। तो हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ये खादिम था, आपने अपने खादिम से फरमाया कि जब मुझे ज़रूरत हो तो तुम दे दिया करना, हाजत पड़े तो तुम मुझे आईना दे दिया करना। एक दिन क्या हुआ कि वो जो कीमती आईना था वो उस खादिम से गिरा और चकनाचूर हो गया, टूट गया। अब खादिम बड़ा परेशान है, हमारा कोई खादिम हो, कोई मुलाजिम हो, घर के अंदर हमने जो है ना वो काम करने वाली खातून रखी है, और उससे कोई कप टूट जाए, कोई ग्लास टूट जाए, कोई ट्रे टूट जाए, कोई प्लेट टूट जाए, तो वो तो बेचारी वैसे ही काम करना शुरू कर दे कि अब मालिकन पता नहीं क्या बोल देगी या क्या कुछ कह देगी। तो आपके खादिम से बड़ा कीमती आईना जो तोहफे में आया वो टूट गया। अब वो था तो परेशान कि एक कीमती आईना था और शेख ने फरमाया था कि जब ज़रूरत हो तो दिया करना, और मेरे से टूट गया। तो खादिम परेशान था, सोच रहा था कि किस तरह आपकी बारगाह में अर्ज़ करूं और बताऊं कि आईना टूटा है। आखिर पर उसे एक खूबसूरत जुमला उसके दिमाग में आया कि मैं जब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ करूँगा तो मैं यूँ कह दूँगा, क्या कहूँगा। उसने आकर वही कहा, वो बारगाह गौसियत में आया और आकर अर्ज़ की, क्या की, फ़ारसी के अंदर कहने लगा, यानी फ़ारसी में इसको नकल किया गया, अज़ कज़ा आईना चीनी शिकस्त, अज़ कज़ा आईना चीनी शिकस्त। मतलब क्या है, मतलब यह है कि तकदीर गालिब आई और जो चीनी आईना था वो टूट गया। यानी तकदीर गालिब आई, टाइम ही ये था उसका, तकदीर गालिब आई और चीनी आईना टूट गया। यानी उसने उस चीज़ को तकदीर की तरफ मंसूब किया कि तकदीर गालिब आई और चीनी आईना टूट गया। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उसका ये बड़ा तदबीर वाला जुमला सुना तो आपने इरशाद फरमाया, खूब शुद्ध कि असबाब खुदबीनी शिकस्त। तर्जमा ये है कि अच्छा हुआ खुद को देखने का आला टूट गया, अच्छा हुआ कि खुद को देखने का आला टूट गया। यानी इसमें अगर सूफियाना रम्ज और सूफियाना असरार तलाश किए जाएं तो वो भी बहुत हैं कि खुद को देखते रहना और अपनी जो है ना वो वाह वाह और अपनी खूबसूरती और अपना जो है ना वो अच्छा होना, इस पर इतराते रहना, और ये चीज़ें आगे से आगे किसी भी जो नफ्स से मगलूब आदमी है उसके दिल में क्या क्या पैदा करती रहे, हुब्बे जा भी पैदा करे और ये कुछ पैदा होता रहे। तो फरमाया, अच्छा हुआ कि खुद बीनी का जो आईना है शिकस्त वो टूट गया, ये बहुत अच्छा हुआ। तो आपने उसको ये जवाब दिया, ये तो हो गया वाकया, लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिला। हमें इसके अंदर बड़ा वाज़े तौर पर एक आका का अपने खादिम से रवैया अंदाज और खादिम की गलती पर उसकी तरबियत भी कर देना और उसको बड़े अच्छे अंदाज के अंदर समझा देना, ये पता चलता है कि एक महंगा आईना किसी की तरफ से हदिया आया और इस्तेमाल भी अभी तक नहीं किया और खादिम बेचारे से टूट जाए, तो उसको डांटना नहीं है, उसको मारा नहीं, उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया, उसको कोई तकलीफ़ नहीं दी, उसके वालिदैन के बारे में माज़ अल्लाह कोई बुरी बात नहीं की। उसने भी दो लफ्ज़ी बात की, आपने भी एक जुमले के अंदर बात को समेटा और मामला ख़त्म कर दिया। अब हमें अपने ज़माने के अंदर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे

घरों के अंदर, हमारे दफ्तरों के अंदर, हमारी दुकानों के अंदर, हमारी फैक्ट्रियों के अंदर जो रवैया, जो अंदाज और जो माद अल्लाह ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोल दिए जाते हैं कि यहाँ ना बोले जा सकते हैं ना सोचे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे लफ्ज़ भी बोले जाते हैं। बच्चे से कोई चीज़ टूट जाती है, चाय गिर जाती है, इस्त्री करते हुए कुछ ज़्यादा इस्त्री हो गया, कपड़ा जल जाता है, बच्चे को दुकान पर कुछ लेने भेजा और उससे जो है ना वो पैसे गुम हो गए और बच्चा घर आया वो पहले ही परेशान है और माँ बाप ऊपर से तशद्दुद शुरू कर देंगे, तुमसे कोई काम ही सही तरह से नहीं होता, हो गए गुम तो क्या हुआ, तकदीर गालिब आई, मुकद्दर में था, हो गया। कोई इस्त्री कपड़े हो रहे थे, मुकद्दर में था, जल गए। कोई चीज़ पकड़ी उठाई थी, जानबूझकर तो नहीं तोड़ी ना, जो पकड़ी थी उठाई थी गिर गई टूट गई। हमारे घरों के अंदर कई चीज़ें होती हैं, इसके अलावा छोटे छोटे नुकसान हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम गुस्से से बिफर जाते हैं, देखकर नहीं चल सकते, तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम्हें शर्म ही नहीं है, तुम्हें काम ही नहीं करना आता, तुम्हें कोई ढंग का तरीका कोई सिखाया ही नहीं गया, तुम्हें अजीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये चीज़ नहीं सिखाई। बहू को बिला वजह डांट देना, बेटे बेटी को बिला वजह डांट देना, दुकान पर आए हुए मुलाजिम को जो बेचारा 15 साल से वहाँ काम कर रहा है किसी गलती पर, उसको इतना बुरा डांटना कि उसकी सारी की सारी मेहनतों पर पानी फेर देना, ये हमारा अंदाज होता है, ये हमारे रवैये होते हैं, ये हमारा कहने के तरीकाकार होता है अपने मुलाजिमीन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ या अपने मातहतों के साथ, ये नहीं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें सिखाया वो अच्छा अखलाक है, वो अच्छी तरबियत है, वो अच्छे अंदाज के अंदर बात करना है, गलती हो भी जाए तो बेहतर अंदाज में तरबियत करना है, गाली देना नहीं है, बुरी बात कहना नहीं है, नामुनासिब रवैया इख्तियार करना नहीं है, माज़ल्ला तशद्दुद करना नहीं है, थप्पड़ मारना नहीं है। हमारे यहाँ तो अल अमान वल हफीज हालात ये बन चुके हैं, सोशल मीडिया हम सभी चलाते हैं, हकीकत ये है कि हमारे मुआशरे में जगहों जगहों पर ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी घर के अंदर किसी मुलाजिमा से कोई काम जैसे होना चाहिए था वैसे ना हो सका, कोई भी वजह हो सकती है ना हो सका, तो मालिकन ने या मालिक ने उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिए, उसके ऊपर गर्म इस्त्रियाँ चलाई हैं। क्या ये वाकयात हमें सुनने को नहीं मिलते, चेहरा सारा ख़राब कर दिया तेजाब डाल के, या उसके थप्पड़ इतने मारे, टांगें इतनी मारी, तशद्दुद ऐसा किया उसके बाजू तोड़ दिए, उसकी टांगें तोड़ दी। ये इंसान नहीं है, ये जानवरों से भी बदतर ज़हनियत का शख्स है या औरत है जो ये हरकत करता है कि अपने मुलाजिम पर, अपनी मुलाजिमा पर या अपने किसी जानने वाले पर ऐसा माज़ल्ला जुल्म करना, ये हमारा दीन नहीं सिखाता, हमारे असलाफ नहीं सिखाते। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीम ये नहीं है, आपकी तालीम बड़ी खूबसूरत है, इसको समझा जाए, इसको पढ़ा जाए, इसको जाना जाए और इसको पढ़कर समझकर अच्छे पहलू निकालने की कोशिश की जाए कि कोई गलती बच्चे से हो जाती है, हो जाती है, इंसान गलतियाँ ही करता है। ये जो बड़ा है कि जो उसको मार रहा है, क्या ये इस उम्र के अंदर गलतियाँ नहीं करता था, सारे ही करते थे, हर बंदे से अपनी ज़िंदगी में बचपन में, जवानी में, नौजवानी में, थोड़ी बड़ी उम्र के अंदर गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलतियों को माफ़ करना और बेहतर अंदाज में सही रास्ता दिखा देना और तरबियत करना, हमारा दीन हमें ये सिखाता है। सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो वाक़िया मैंने अर्ज़ किया कि अच्छा अखलाक रखना अपने मुलाजिमों के साथ, ये हमारा दीन हमें सिखाता है। और आपकी ज़िंदगी के अखलाक इतने प्यारे थे कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह में सखावत बड़ी थी, गरीबों की मदद करना, बदहालों की मदद करना, जो बेचारे फ़कीरी की ज़िंदगियां गुजारते हैं उनकी माली इमदाद करना, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था। यानी हमने महज करामत ही आपसे जोड़ दी और करामत को ही समझा, या आप महज एक सूफ़ी थे और अल्लाह अल्लाह करने वाले और गारों में रहने वाले थे बस यही समझा ना, आपकी ज़िंदगी के अंदर आप तलाश करते थे गरीब कौन है, फ़कीर कौन है, मेरे इलाके में, मेरे शहर में नादार कौन है, यतीम कौन है, कौन है जो ज़रूरतमंद है, आप बढ़कर उनकी मदद करते थे। हत्ता के वाक़यात ये हैं और एक कसीर वाक़यात है कि आप सफ़र में भी जब जाया करते तो आबादियों से गुज़रते, इलाकों से गुज़रते, शहरों से गुज़रते, तो आप बाज़ूकात अपने खुदाम से पूछा करते थे कि कोई यहाँ पर अगर गरीब हो तो बताओ उनकी मदद करें। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों चाहने वाले होंगे, वो आपकी बारगाह में कोई न्याज ले आया, कोई हदिया ले आया, तो आपका मिजाज मुबारक क्या था। वाक़यात बताते हैं कि आप वो हदाया, वो तहाइफ, वो न्याजी और वो आपकी खिदमत में जो चीज़ें पेश की जाती थी आप इलाके के गुरबा में बांट देते थे। यानी सफ़र पर गए और आपकी बारगाह में चीज़ें पेश हुई तो आप वो सारी चीज़ें जमा की और अपने खुदाम में जो गरीब हैं, जो फ़कीर हैं, उनमें बांट दी, इलाके में तलाश करवाया, पता करवाया, फ़लाँ औरत बेवा है, फ़लाँ बच्चा यतीम है, फ़लाँ के हाँ ये है, तो आप उनके घर पेश कर देते। ये अंदाज़ है गौसे पाक का, ये तरीका है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये अंदाज़ हमें अपनाने की ज़रूरत है, किसी गरीब की मदद करना, किसी बुरे हाल वाले के सहारा बन जाना। एक जुमला किसी ने बड़ा प्यारा कहीं पढ़ा
और उसने लिखा है, वो कहता

0: है कि कंधे की जरूरत सिर्फ जनाजों को नहीं होती, जिंदा लोगों को भी कंधों की जरूरत होती है। हमने अपने कंधे रखे हुए हैं सिर्फ जनाजों के नीचे देने के लिए। सवाब का काम है, नेकी का काम है, मगर ये कंधा आसरा बनना चाहिए किसी की जिंदगी के अंदर भी। यानी आप यूं समझ लीजिए, एक और जुमला कहता हूं चोट करने के लिए, कि दुनिया से कोई बंदा जाता है ना, तो हमारे यहाँ रिश्तेदार क्या करते हैं, जी जनाजे के बाद का खाना जी मेरी तरफ से होगा, फलां बोलेगा नहीं हमारी तरफ से होगा, और कुल शरीफ वाले दिन का खाना हमारी तरफ से होगा। यानी उसके जले जाने के बाद कि वो दुनिया से चला गया, अब उसके खाने पीछे जो है ना वो मेरी तरफ से, इसकी तरफ से, उसकी तरफ से हैं। और जब वो बेचारा बीमार था तो अस्पताल जो है ना वो 2 किलो सेब भी कभी लेके नहीं गए। ये भी होता है, यानी जिंदा को कभी दवाई का नहीं पूछा, जिंदा था तो कभी कोई फल फ्रूट नहीं उसके पास लेकर गए, जिंदा था तो कभी उसकी कोई अस्पताल की फीस नहीं अदा की, और दुनिया से चला गया तो कुल का खाना और जनाजे का खाना मेरी तरफ से कर लें। ये हमारे रवैये हैं, ये हमारे अंदाज है। गरीब को मदद की जरूरत होती है, फकीर को हाजत रवाई की जरूरत होती है, कंधे की जरूरत होती है। आखिरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में एक ऐसा बाला खाना है कि जिसके बाहर अंदर से और अंदर बाहर से दिखाई देता है। ये बाला खाना अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रखा है, उसको अता फरमाएगा जो मोहताजों को खाना खिलाता है। पेट खाली, फकीर, गरीब, मोहताज, उसको खाना खिलाता है। सिर्फ खाना खिलाना है नहीं, उसको पैसे दे दिए खाना खुद खा ले। कोई बहुत गरीब अस्पताल में है, उसको पैसे दे दिए वो खाना खा ले, वो दवाई ले ले। फरमाइए बाला खाना उसके लिए है। अल्लाह ताला हमें सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक और आपकी ज़िंदगी के जो ये चैप्टर्स हैं, इनको समझने और अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिस करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी जिल अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: हर गदा मोहताज है उनके दर एहसान का, बेकरे अखलाक है जो मुर्शिद जिलान है। मज़ीद सामईन, अभी हम अखलाक के गौसे आज़म के उस रू परवर और नूरानी बयान के ज़ेर असर थे, जिससे ने हमारे दिलों के आईनों पर जमी गर्द को साफ कर दिया है। कैसा पाकीज़ा और सबक आमोज बयान था सामईन। एक ऐसा अंदाज़ ज़ीस जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों में ढलने के लिए है। मज़ीद सामईन, जब दिल मोहब्बत औलिया से मुत्तर हो चुके हैं और रूह पर अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है, तो वक्त हुआ है अपने अकीदत के फूल उनके आस्ताने पर निछावर करने का। वो दरबार जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं मोरा, वो आस्ताना जहाँ से है कोसों को असर मिलता है। आइए मुअज़्ज़िज़ सामईन अपने क़ुलूब को एक बार फिर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह की मोहब्बत में यकसूं कीजिए और समात फरमाइए ये दिलकश और परवर नजराना अकीदत।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 98.2 U

वो अमारी साथे। श्रोता मित्रों, आजे माँ कुष्मांडानी रात्रि, माँ कुष्मांडानुं स्वरूप अने तेमनुं महत्व शुं छे तमने जणावीए कि माँ कुष्मांडा पोतानी मंद हास्यथी अंधकार रूपी ब्रह्मांड में प्रकाश फैलावनार अने सृष्टिनी रचना करनार देवी मानवामां आव्या छे। अने आ दिवसे पूजा करवाथी भक्तोना जीवनमांथी नकारात्मकता दूर थाय छे अने आयुष्य, यश तेमज बळ वृद्धि प्राप्त थाय छे।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

शक्ति। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना, हमारा सप्रेम नमन स्वीकार करें। आज शारदीय नवरात्र की चौथी रात्रि और आज हम माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो आइए देवी माँ को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। कुछ भक्तिमय गीतों के साथ मन को तृप्त करते हैं, मन के तनावों को, मन के विकारों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

भक्ति में शक्ति कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं। आज हम देवी माँ के चौथे रूप की पूजा करते हैं। चौथे रूप को माँ कुष्मांडा का रूप कहा जाता है और आज ही के दिन माँ कुष्मांडा का ध्यान जो करते हैं उन्हें फूल, पीले वस्त्र, श्रृंगार का सामान, अक्षत, रोली, धूप और दीप अर्पित किया जाता है। मंदिरों में, शिवालयों में पूजाएं, प्रार्थनाएं जारी रखी जा रही हैं और आज के दिन बिल्कुल हरा या पीला रंग पहनना अति शुभ माना गया है। माँ कुष्मांडा को कहते हैं कि कद्दू की मिठाई या फिर मालपुआ का भोग लगाया जाता है।

नवरात्रि की आज की चौथी रात्रि आदि शक्ति के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित माना गया है और विधि विधान के साथ आज माँ की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी मंद यानी हल्की हंसी के साथ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ दुर्गा को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया। कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी तो चहुं ओर अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी और इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति या आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से समस्त रोग शोक दूर होकर आयु और यश की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सकारात्मकता की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा माँ भवानी का चौथा स्वरूप है और इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और प्रकाशमान है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है और इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। माँ कुष्मांडा के आठवें हाथ में सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माता का वाहन है सिंह या शेर। जाने में कहा जाता है कि कुष्मांडा जी की पूजा करने से बिल्कुल हमें अत्यंत शांति प्राप्त होती। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सभी ने प्रेम और भक्तिभाव से हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन, जय माता दी है।

朋友，今天的星月之旅就到这里跟大家说再见了，谢谢听众朋友的收听，下次节目我们再会。

0: तो नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम जी, सभी को
2: नमस्कार। कल रात से आज सुबह तक देश में लागू कर्फ्यू के बावजूद कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आईं, जहां पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 नाबालिग हैं। 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज उन्हें विभिन्न जिला अदालतों में पेश किया जाएगा। आज 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक लगेगी। स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में फैसला लिया जाएगा। देश के अलग इलाकों में हिंसक घटनाओं के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नावामागी ने अभिभावकों, खासकर माताओं से अपील की है। उनका कहना है कि कुछ लोग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चालाकी से उनसे काम निकाल रहे हैं। उप प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों को सही रास्ते पर लाने की मांग की। कल रात देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं पेश आई। कर्फ्यू के बावजूद भी लोग सड़कों पर उतर आए। कर्फ्यू के कारण हिंसा पर काबू पाना ज्यादा आसान रहा, लेकिन इस बार हिंसा केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों के साथ साथ देश के पूर्व और दक्षिण में भी फैल गई। उत्तरी इलाके गुडलैंड्स में भी देर रात तक अधिकारी इन प्रदर्शनों को काबू में करने की कोशिश में लगे रहे। बॉम्बू, सेंट क्वा, गुडलैंड्स, मेबर्ग, बेजीटोम्बो में एक ही नजारा था। सड़कों को बाधित किया गया, पहिए जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं। बॉम्बू में विनर्स सुपरमार्केट में लूटपाट की खबर है। कास्कावेल मॉल की कई दुकानें लूटी गईं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। मेबर्ग में एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया। सेंट क्वा और बेजीटोम्बो में संयम बनाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। काथोबोन में 2 लोगों को मोलोटोव कॉकटेल के साथ पकड़ा गया। याद रहे कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 साल कैद की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आज प्री प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी स्कूल बंद हैं। विश्वविद्यालयों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। हालांकि एक महत्वपूर्ण अपवाद है, एससी और एचएससी की परीक्षाएं निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। परिवहन सेवाओं की बात करें तो बस सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन मेट्रो एक्सप्रेस सेवा पूरी तरह ठप है। भारी नुकसान के कारण आज कोई भी ट्राम नहीं चल रही है और पूरे सप्ताह मेट्रो सेवा बंद रहने की संभावना है। 114 मिलियन रुपए की जब्ती की जांच के सिलसिले में कुबीता जगनाथ आज अपने वकील राउफ गुलबुल के साथ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मुख्यालय पहुंची। इस मामले में तीसरी बार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की पत्नी के साथ पूछताछ की जा रही है। इस मामले में रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र के बिजनेसमैन जोजियों दिलावन और उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया था। जोजियों दिलावन ने पुष्टि की थी कि ये रकम पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ की है, जिन्हें इसी मामले में हिरासत में लेकर बाद में जमानत पर रिहा किया गया था। और विदेशी खबरों में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा के मद्देनज़र फ्लाइट का रूट बदलकर उसे तुरंत जयपुर हवाई अड्डे की ओर डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल विमान गहन जांच के सिलसिले में है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। लिस्कालिये ब्रांच रोड रिपाई में 75 साल के 75-year-old के श्री आनंद मोहन, जो कांग्रेस से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे अश्विन मोहन के घर लिस्कालिये ब्रांच रोड रिपाई से उठाकर रिपाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
3: News on NBC Play and NBC.mu.
4: You're listening to RM3 Radio.

ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा दिखा दो आपका मुखड़ा तो हम देख नहीं पाते लेकिन यस आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के जरिए वो प्यार हम जरूर फील कर पाते हैं तो आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं RM3 रेडियो मनोरंजन जहां पर लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम सुहाना सफर मैं हूं परी आपके साथ अभी से लेकर दिन के 2 बजे तक इन खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल को लुभाएंगे और आपके इस आफ्टरनून को और भी खास एंड स्पेशल बनाएंगे तो हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं होप यू हैविंग

0: नाइस टाइम. वैसे आज का दिन उम्मीद करते हैं अच्छा शुरू हुआ है आपका, और बस यही कामना करते हैं कि आगे दिन बढ़ते बढ़ते भी अच्छे से ही बीते. यहाँ पर गुड विशेज तो सभी लिसनर्स के नाम. नवरात्रि भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारी गुड विशेज टू ऑल द लिसनर्स.
1: बराबर कोई नहीं. यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे. आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि.

तो जी हाँ दोस्तों, हम एवरग्रीन सॉन्ग्स की बात करते हैं और कुछ गाने ऐसे जो बहुत साल पहले रिलीज हुए थे, डेकेड्स हो चुके हैं, लेकिन इवन टुडे ये गाने उतने ही लाजवाब, उतने ही वंडरफुल। एंड टू लेजेंड्स टुगेदर, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, दोनों ने इस गीत को गाया और अपने अपने अंदाज में गाया, तो दोनों का अंदाज हम आपके लिए लेकर आए हैं। द एवरग्रीन क्लासिक हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो इस वक्त साथ दे रहे हैं ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन, ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के लिए।

दिल की चाहत और मासूम सा दिल कितना कुछ पाना चाहता है, लेकिन अभी के लिए तो बस यही कोशिश है कि जो छोटी छोटी आपकी ख्वाहिशें हैं उन्हें हम पूरा कर सकें, यानी कि आपकी पसंदीदा गीत जो हम यहाँ पर चला रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। इस वक्त उषा सीता जी हमारा साथ दे रही हैं आप, और डेडिकेट कर रही हैं गाना पूरे परिवार के नाम, बेटी, दामाद, नाती, पोते, पति, सभी जो आपके परिवार हैं, सभी जो आपके अपने हैं, एंड ऑफकोर्स फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। खूबसूरत सा गीत, फिल्म है सांझ और सवेरा। तो यहाँ पर एक बार फिर लता जी की आवाज और ये खूबसूरत नगमे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम सुहाना सफर, मैं हूँ परी आपके साथ। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200 या फिर आपके फोन कॉल्स 4028070 पर।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

और यहाँ पर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के नाम। कविता जी दफ्तर से हमारा साथ दे रही हैं और डेडिकेट कर रही हैं गाना मोहन, रेखा, अंबिका, प्रमिला सभी के लिए जो इस वक्त साथ दे रहे हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, इस गाने को आप सुनना चाहते हैं, आशा फिल्म का ये गाना, इसे हम आपके लिए चला रहे हैं। और कविता जी साथ देने के लिए शुक्रिया, रेडियो मनोरंजन के साथ ट्यून इन करने के लिए शुक्रिया। तो आपके मैसेजेस व्हाट्सएप के जरिए 5250 6200, नॉर्मल मैसेजेस भी आप इसी नंबर पर हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आपके फोन कॉल्स 4028070402807070 पर।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और चलिए यहाँ पर उमा जी हमारा साथ निभा रही हैं. आप फ़ोन करने के लिए धन्यवाद. और ये जो गीत है इसे हम आपकी ओर से चला रहे हैं सभी सुनने वालों के नाम. पुराने गीतों का कारवां आपके लिए हमने सजाया है ऑन RN3 रेडियो मनोरंजन. रफ़ी साहब की आवाज़ पगला कहीं का फिल्म से लिया हुआ ये गीत खास तौर पर उमा जी आपके लिए और आपकी ओर से फॉर ऑल योर लव्ड वंस एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन.

एंड यहाँ पर एक फन सॉन्ग यानी कि एक गाना ऐसा जो हमेशा से रहा है एवरग्रीन संगम फिल्म का ये गाना देवयानी जी सुनना चाहती हैं आप अपनी प्यारी सी नातिन लिव्या के लिए इसे आप डेडिकेट कर रही हैं और साथ ही साथ फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन लता मंगेशकर की आवाज़ संगम फिल्म से लिया हुआ ये गाना वैजयंती माला और राज कपूर पर पिक्चराइज्ड ये ब्यूटिफुल गाना गाने में जितनी मस्ती है गाना उतना ही खूबसूरत है सभी हमारे साथी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं हूं परी और लेकर आई हूं आपके लिए सुहाना सफर शामिल हो रही हैं आपकी पसंद के कुछ गीत कुछ हमारी पसंद के नंग में साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन

0: RM3 Radio. Radio.
1: और यहाँ पर सीता जी पौंदे लास्का से हमारा साथ दे रही हैं और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना सभी दुर्गा माँ के भक्तों के नाम, जो भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और कहती हैं कि जितने भी भक्त हैं उन पर माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर। परी का साथ रहेगा ऑन रेडियो।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। कल रात एक बार फिर पुलिस को कई इलाकों में हालात संभालने के लिए तैनात होना पड़ा। कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद देश के कई हिस्सों में हुई घटनाओं के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इन घटनाओं के सिलसिले में कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 नाबालिग भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 43 को हिरासत में रखा गया है। इन सभी को अपने खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के तहत आज बुधवार को विभिन्न जिला अदालतों में पेश किया जाएगा। वहीं स्थिति की समीक्षा करने और आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर बाद होगी। हमारे बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, ये सख्त चेतावनी आज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नावामारी ने दी। देश में हाल के दिनों में हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने पहल की है और माता पिता से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने खास तौर पर परिवार की माताओं को संबोधित किया। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अव्यवस्था फैलाने के लिए नाबालिगों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्यन नावामारी ने लोगों से समझदारी दिखाने और नागरिक जिम्मेदारी निभाने की तत्काल अपील की है। कविता जगनत आज सुबह फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC पहुंची। ये कई सूटकेसों में लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपए की बरामदी से जुड़े मामले में जांच का अगला चरण है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ की पत्नी के साथ उनके वकील राउफ गुलबुल भी मौजूद थे। इस मामले में उनसे तीसरी बार पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि इस जांच के सिलसिले में रियल एस्टेट और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कारोबारी जोजियों दिलावो तथा उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया था और दिलावन से ने दावा किया था कि ये पैसे प्रवीण जगन्नाथ के थे। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करती हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं निर्मा
2: जी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हुए हैं। हमले में एक आवासीय इमारत और विद्युत केंद्र को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की

0: तुर्की ने रूस पर लड़ाई बंदी भंग करने का आरोप लगाया है। विदेश की एक और खबरें आपके साथ आशिता।
1: जी निर्मा, और अन्य खबरों में ये भी खबर है कि वैटिकन ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया है कि पोप लियो 14वें को फेफड़ों का कैंसर होने का पता चला है। हालांकि उनके दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से को निकालने के लिए की गई सर्जरी सफल रही। 71 वर्षीय पोप की मंगलवार को रोम के जेमेली अस्पताल में लगभग 90 मिनट तक सर्जरी हुई। इसके बाद उन्हें फेफड़ों के एंडोनोकोसिनोमा से पीड़ित पाया गया। वैटिकन के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा और इस दौरान कोई जटिलता नहीं हुई। सर्जरी के बाद पोप सामान्य रूप से होश में आए और कुछ समय तक निगरानी में रहने के बाद उन्हें उनके कमरे में वापस ले जाया गया। वैटिकन ने बुधवार सुबह यानी कि आज पोप ने बताया कि पोप ने अस्पताल में रात शांतिपूर्ण रूप से बिताई। उम्मीद है कि उन्हें लगभग एक सप्ताह तक अस्पताल में रहना होगा। फेफड़े में गांठ का पता नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान चला था, जिसे वैटिकन ने सामान्य जांच बताया है। इससे पहले पोप की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार करते रहे। जब उनकी कार वहां से गुजरी तो लोगों ने उनका अभिवादन किया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनते हैं। 83 साल की 83 years old की श्रीमती पवित्र देवी बोहरन, पैदाशम बेचू की सिंधुयाल और जिन्हें सविता के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 1 बजे लाशापेल और दौतिलियन सन वो बस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगौद की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM। लिस्कालिए ब्रांच रोड रिपाई में 75 साल के 75 years old के श्री आनंद मोहन जिन्हें कांग्रेस के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे अश्विन मोहन के घर रिपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। Your news on NBC Play.

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

और इसी गीत के साथ आपका हम स्वागत करते हैं 1:13 वेनसडे आफ्टरनून 14th of October नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी लिसनर्स को। साथ ही साथ यहां पर साथ निभा रहे हैं आप तो पुराने गीतों का कारवा आपके लिए लेकर आए हैं सुहाना सफर प्रोग्राम में मनीता जी ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस हमारा साथ दे रही हैं आप और इसी गीत को आप डेडिकेट कर रही हैं आपकी प्यारी सी ममा सुमंती और आपके पूरे परिवार के लिए सभी भक्तों के लिए और सभी के लिए भेज रही हैं बहुत सारी गुड विशेस ऑल द वे फ्रॉम फ्रांस तो साथ देने के लिए शुक्रिया। साथ ही यहाँ पर हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हमेशा साथ निभाते हैं हमेशा अपना प्यार हम तक पहुँचाते हैं तो वी ऑल्सो हैव आयशा और आप डेडिकेट कर रही हैं गाना फॉर योर हस्बैंड अमजद और हमारी पूरी टीम के नाम भी ब्यूटीफुल गाना चुनकर लाई हैं आप रफ़ी साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत आपके नाम और आपको तो हम बस यही कहना चाहेंगे आप आए बाहर आए और इसी के साथ ये गीत लेकर आए हैं आपके नाम आयशा आपकी ओर से फॉर हस्बैंड अमजद सभी हमारे लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं बिल्कुल यही तो हम कहना चाहते हैं कि आप ना हो तो हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगे सभी के लिए जितने भी आपके मैसेजेस जितना भी आपका प्यार हम तक पहुँच रहा है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं हूँ परी आपके साथ दोपहर के 2 तक खूबसूरत गीत आपके लिए चलते रहेंगे RM3 रेडियो मनोरंजन समय हो चला है आपके प्रोग्राम सुहाना सफर का।

और चलिए एवरग्रीन सॉन्ग्स आपके लिए यहां पर चल रहे हैं सुहाना सफर प्रोग्राम इंतकाम फिल्म के गाने के बाद लेकर चलते हैं आपको उस एरा में जहां पर कुछ ऐसे गाने आए जिन्हें हम सालों बाद भी उतना ही पसंद करते हैं। कटी पतंग ये फिल्म तो आपको याद होगी और इसमें राजेश खन्ना साहब और आशा पारेख जी हाँ उनकी जो केमिस्ट्री है वो भी आपको याद होगी और एक से बढ़कर एक गीत जो इस फिल्म में हमने सुने वो भी आपको याद होंगे। तो उन्हीं यादों को एक बार फिर यहाँ पर हम ताज़ा करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। डेडिकेट कर रहे हैं माधुरी जी आपके लिए, इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं आप RM3 रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए एंड इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ किशोर कुमार, फॉर ऑल द फैंस ऑफ राजेश खन्ना साहब एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन।

यह नवरात्रों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

नवरात्रि विशेष के साथ यहाँ पर कुछ प्यारे गानों का कारवां भी आपके लिए चल रहा है, भूलिएगा नहीं। अभी से लेकर 2 बजे तक मैं हूँ परी आपके साथ। 12 से लेकर 2 बजे तक मंडे टू संडे आपके लिए चलता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर। और वो सफर जो हम सब तय करना चाहते हैं, वो सफर जो हम सबको सुहाना लगता है, वो सफर जहाँ पर आपकी कुछ स्वीट मेमोरीज एक बार फिर ताज़ा होती है। तो साथ निभाने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। 5250-6200-5250-6200 या फिर आपके फोन कॉल्स 4028070-4028070 पर। अभी के लिए विजय पोखन जी हमारा साथ दे रहे हैं, क्रांति फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत डेडिकेट करना चाहते हैं सभी लिसनर्स के नाम, और सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत सारी गुड विशेज़।

0: RL3 Radio.
1: जी हाँ दोस्तों, आर एन थ्री रेडियो मनोरंजन. इस वक्त ये जो खूबसूरत सा गाना है, इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं फॉर यू करिश्मा, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम विनय. प्यार करते हैं आपसे, मिस कर रहे हैं आपको, एंड चुनकर लाए हैं ये खूबसूरत सा गीत आपके नाम, फॉल द लव वर्ड्स, जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर. खूबसूरत गीतों का कारवां, सुहाना सफर प्रोग्राम आपके लिए अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक. मैं हूँ परी आपके साथ.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत ज्ञानती जी पचित्रव्य से हमारा साथ दे रही हैं और कॉल करने के लिए शुक्रिया धन्यवाद. यहाँ पर ये प्यारा सा गीत हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं आपकी ओर से सभी लिसनर्स के नाम और नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी तक पहुँचाना चाहती हैं. ज्ञानती जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडियो मनोरंजन को चुनने के लिए. तो लेकर आए हैं आपके लिए सुहाना सफ़र प्रोग्राम. अभी से लेकर दोपहर के 2 बजे तक चलेंगे ऐसे ही कुछ खूबसूरत गीत आपके लिए.

और चलिए यहां पर जितने भी हमारे लिसनर्स जिन्होंने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया, अब वक्त हो चला है कि मैं परी आपसे लूं अलविदा, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ। समाचारों के बाद अरविंद के साथ सुन पाएंगे प्रोग्राम धरोहर, तो उनका साथ निभाइए और मुझे यानी कि परी को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। कल इसी वक्त

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. हमारे बच्चों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, ये सख्त चेतावनी आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर्याना वोमारी ने दी. देश में हाल के दिनों में हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने पहल की है और माता पिता से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है. उन्होंने खासतौर पर परिवार की माताओं को संबोधित किया. उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अव्यवस्था फैलाने के लिए नाबालिगों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. आर्याना वोमारी ने लोगों से जिम्मेदारी दिखाने और नागरिक जिम्मेदारी निभाने की तत्काल अपील की है. आज बुधवार को कोबिता जगन्नाथ ने फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में तीसरी बार पूछताछ की गई. उनसे पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी ने फरवरी 2025 में तलाशी के दौरान 114 मिलियन रुपए से भरे सूटकेसों की बरामदगी के मामले में एक बार फिर सवाल जवाब किए गए. एफसीसी के अधिकारियों ने कोबिता जगन्नाथ से 3 घंटे से कुछ अधिक समय तक पूछताछ की. ये मामला फरवरी 2025 में तलाशी के दौरान 4 सूटकेसों में 11 करोड़ 40 लाख रुपए की बरामदी से जुड़ा है. ये तलाशी कंपनी माई हॉलीडेज लिमिटेड के 2 अधिकारियों से संबंधित जांच के तहत की गई थी. इस मामले में ये तीसरी पूछताछ थी. इस दौरान कोबिता जगन्नाथ के साथ उनके वकील भी मौजूद थे. वे दोपहर के समय एफसीसी कार्यालय से बाहर निकले. उन्हें आगे की पूछताछ के लिए बाद में किसी अन्य तारीख पर फिर से बुलाया जाएगा. आध्यात्मिक शुद्धि और आत्म अनुशासन का समय. पूरे मॉरिशस में तेलुगु समुदाय के श्रद्धालु भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर की आराधना कर रहे हैं. 40 दिनों तक चलने वाली इस व्रत और भक्ति अनुष्ठान के दौरान द्वीप के विभिन्न मंदिरों में प्रतिदिन प्रार्थनाएं की जाती हैं. भक्ति गीतों और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है और तबले की थाप के साथ भक्ति गीत गूंज रहे हैं. भक्तों के स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है. काठरबोन स्थित मंदिर में श्रद्धालु पूरे आस्था और भक्ति के साथ एकत्र हुए. पूरा वातावरण आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा से सराबोर रहा. और अब बढ़ते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ की ओर, जहां पर निर्मा हमें ज्यादा जानकारी दे रही है.
6: जी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हुए हैं. हमले में एक आवासीय इमारत और विद्युत केंद्र को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लड़ाई बंधी भंग करने का आरोप लगाया है. विदेश के एक और खबरों के साथ आशिता.
5: अन्य खबरों में हम आपको बता देते हैं कि आधुनिक यूरोपीय इतिहास में तोड़फोड़ की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक के 4 साल बाद यूक्रेन के एक व्यक्ति पर बुधवार को जर्मनी के हैमबर्ग में मुकदमा शुरू हो रहा है. उस पर रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को विस्फोट से उड़ाने का आरोप है, जिनके जरिए जर्मनी को गैस की आपूर्ति की जाती थी. जर्मनी

0: अभियोजकों के अनुसार सरई के नाम से पहचाने जाने वाले इस व्यक्ति पर यूक्रेनी सैन्य कर्मियों के साथ मिलकर पाइपलाइनों को नष्ट करने की साजिश रचने का आरोप है। इसका कथित उद्देश्य गैस से होने वाली रूस की कमाई रोकना था, जिसे वह अपने युद्ध का खर्च उठाता है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: RM3 Radio. Radio.
5: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगीत

0: धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। सब कोई के नमस्ते। हम अरविंद और साथ में हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू टोको हवन। ये कार्यक्रम आज जो गीत सुनला शुरुआत में एगो खास गीत। ये गीत महात्मा गांधी संस्थान के कलाकार लोग गैले हवन जा है जा एकर धुन बनावल गलबा और वो गीत लिखे के हमके मौका मिला रहल। ये उस समय में बना रहल जब मॉरिशस में एक दूगो समस्या रहल, बाढ़ आ रहल, कोविड रहल। तो कलाकार लोग मिल के जनता के बोलन जा कि हमनी तो लोग के संगे है सर। मॉरिशस के में जो एकता बा इस सब पर ई गीत लिखल गए रहल। कैसे हमनी अपन सुर संगीत से हमनी के कला से सकब जा हमनी के देश में शांति अमन आने और हजा समस्या से बचे। तो आज के ई गीत के शुरुआत हमनी के नहीं जा का है कि एक दूगो समस्या होत बा। तो हमेशा सोचिए कि ई देश में जो संस्कृति बा जो लोक संस्कृति बा सबके है एकर में जो परंपरा बा सबके है हमी के जो धरोहर है सबके है। तो जब हमनी के एक गो धरोहर बा एक गो संस्कृति बा एक साथ है जा तो काहे चाहला लड़ाई करे के। तो हमनी के भोजपुरी संस्कृति में एकर बारे में बहुत कुछ बोलल गल बा बहुत गीत लिखल गल बा। संगे संगे आज के कार्यक्रम में हमनी तनिकुन अभी रामनवमी चलत बा तो हमनी के सहयोगी जय गणेश दाव सिंह रामनवमी के संदर्भ में एगो दुर्गा माँ के वो गीत पर तनिकुन चर्चा करियन। तो चला कार्यक्रम के आगे बढ़ाया जा।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: RM3 Radio. Radio.
1: 3 सब गीत सुन के हमी में जो राष्ट्रीय प्रेम आवेला वो जरूरी है। कहे कि हमने मॉरिशस के सुंदर बनेले हैं जा हमी के पुरखन लोग देश के सुंदर बनेले बा। कम से कम वो पुरखन लोग के याद चलना करे कि जो लोग इतना मेहनत करके ई देश के इतना सुंदर बनेले हैं जा और वो मारपीट नहीं चलना करेगी। तो हमी के पुरखन लोग जो ऊपर से हमने के आशीर्वाद देवत हो जा वो लोग के चलना याद करे कि वो लोग कितना कठिनाई सह के अपन देश छोड़ के हिजा पर देश के आके इतना सुंदर बने लन जा ई देश के चाहला निमन से रखे के।
0: RM3 Radio.
2: कमर में धोतिया और

तो जैसे देख ला धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आज तनिकुन पौसन गीत सुननी जा जो हम के देश से संबंधित बात शुरू में और साथ साथ में गिड़मिटिया पर गीत भारत के भोजपुरी के गीत अब और दुगो ऐसा को गीत सुनी ल जा और कार्यक्रम के हजे पर समाप्त कर जा हमने के सहयोगी संजू के बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिल जा पर चलते चलते फिर से याद दिला दिला जा जैसे शुरू में बोलनी हमने के धरोहर है सब कुछ है देश हमने के धरोहर है ये धरोहर के सरोवर के साफ रखिया एकरा सुरक्षित रखिया बड़ी जरूरी है नमस्ते।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लहरों पर रेडियो मॉरिशस का ये प्रसारण और आज की चर्चा का ये कार्यक्रम केवल रेडियो मॉरिशस पर से सीधा प्रसारित होता हुआ माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सब प्रेम नमस्कार स्वीकार करें नवरात्र की पावन मंगल कामनाओं के साथ। आज के इस कार्यक्रम को हम लेकर उपस्थित हुए हैं। वैसे आपको ये भी याद दिलाते चले कि आज केवल हम आपका साथ देंगे क्योंकि देश भर की कुछ तनाव भरी परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारे अतिथि हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, परंतु कुछ ऐसी ही बातों को लेकर आज के इस कार्यक्रम को बिल्कुल हम भरेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन्स के साथ। और अगर बिल्कुल

आप भी हमारा साथ देना चाहें तो बेशक 4028085 के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी बातें जो बहुत ही ज़्यादा तनाव हमारे पूरे दुनिया में आज देखा जाए तो सोशल मीडिया के कारण कितने लोग मानसिक बीमारी, मानसिक हेल्थ की नुकसान से परेशान है। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही जानकारियां हम आपको देंगे और ये सारी जानकारियां कुछ ऐसी ठोस रिसर्चेस पर आधारित हैं। एबीपी न्यूज़ के अनुसार बिल्कुल ऐसा माना गया कि जीवन में जहर घोल रहा है सोशल मीडिया, डिप्रेशन का बना रहा है शिकार। और इस पर बिल्कुल जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को परेशान कर रही हैं। वैसे आज के ज़माने में हमने ये तो देख ही लिया है कि सोशल मीडिया एक तरह से एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें बिल्कुल दुनिया भर की खबरें मिनटों में देता है। सोशल मीडिया ने लोगों की जिंदगियों को जितना आसान बनाया है उतना ही मुश्किल से भी भर दिया है। आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता उसे दुनिया में चल रही कई घटनाओं की जानकारी ही नहीं हो पाती। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने लोगों को लोगों से जोड़ने का काम किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे मेंटल हेल्थ को कितना अधिक नुकसान पहुंचाता है और कैसे हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के लिए बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर देता है। शायद आप सोशल मीडिया की चकाचौंध में इसे महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इसका आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलता और आप तनाव, चिंता और डिप्रेशन के शिकार होते हुए चले जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि हेल्थ लाइन ने हाल ही में एक सर्वे किया था और इस सर्वे में ऐसा माना गया कि 25% यानी 25% लोगों ने माना कि सोशल मीडिया से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जबकि 53% यानी 53% ने कहा कि इसका इस्तेमाल कम करने पर मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार होता है। दुनिया भर में आई बिल्कुल एक समय था जब 2019-2020 में कोरोना महामारी के दौरान खराब मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों की जो संख्या थी वो बढ़कर बिल्कुल 66% हो गई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में थे और सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। एक्सप्रेस वीपीएन के माध्यम से 2021 में सर्वेक्षण के मुताबिक 1500 अमेरिकियों पर किए गए शोध में 86% ने ये कबूल किया था कि सोशल मीडिया सीधे तौर पर उनकी खुशी और आत्म छवि पर एक नकारात्मक प्रभाव डालतापन और डिप्रेशन की बात भी कबूली। सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के कई फायदे हैं ऐसा भी कहा गया, और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे के 2022 के क्रॉस नेशनल ऑनलाइन सर्वे में पाया गया कि जिन लोगों ने मनोरंजन के लिए या कोरोना महामारी के दौरान अकेलापन को कम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया उन्होंने खराब मानसिक स्वास्थ्य का भी अनुभव किया। दरअसल सोशल मीडिया पर जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से हमें खुद पर डाउट होने लगे तो अक्सर चिंता और तनाव का शिकार हो जाते हैं। हम सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट शेयर करते हैं और उस पर अगर लाइक्स कम आए

या फिर हमारे चाहने वालों का कोई कमेंट ना आए या किसी ने उस पोस्ट की बुरी तरह से निंदा कर दी है, तो हम इन सब बातों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और चिंता में चले जाते हैं। दिमाग में घंटों तक बस वही बातें चलती रहती है कि फलाना व्यक्ति ने मेरे इस पोस्ट पर लाइक या कमेंट क्यों नहीं किया, और जिसने किया उन्होंने इस तरह से कमेंट क्यों किया। इन सारी बातों से हम एक चिंता का जाल बुनते चले जाते हैं और खुद ही उसमें फंसते चले जाते हैं। और सोशल मीडिया से जुड़े रहना अच्छी बात है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल सोशल मीडिया से ब्रेक लेने के लिए फ़ायदे तो देती है, पर कौन से फ़ायदे। सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेंगे, दूसरों से खुद को कमतर नहीं समझेंगे। डिप्रेशन और टेंशन से हम कोसों दूर रहेंगे और हमारा जो मूड है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। प्रोडक्टिव चीज़ों में हम कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। बिल्कुल जितनी भी चीज़ें हैं जीवन में, हमेशा हमें प्रोडक्टिव बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। रोज़ रोज़ लाइमलाइट में आने के लिए क्या पोस्ट डालें ये नहीं सोचना पड़ेगा। आपका असल जिंदगी से जुड़ाव ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सोशल मीडिया से बचे हुए समय का आप अपने प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। कई बार आपने सोचा होगा कि आज मैं मोबाइल उठाता हूँ बस 5 मिनट के लिए देखता हूँ, और जब आपका सर उठे और आप देखते हैं कि 5 मिनट के बजाय मैंने तो 2 घंटे वेस्ट कर दिए। होता होगा ना आपके साथ भी ऐसा ही। और बिल्कुल आज के ज़माने में हमने देखा है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया का लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और बिल्कुल कुछ दिनों से हमारे देश में बढ़ते हुए तनाव को देखकर, बढ़ते हुए तनाव को मद्देनज़र रखते हुए कई बार लोग कुछ ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जिससे कि समा को और शांत करने के बजाय हम कहते हैं ना कि आग में तेल झोंकने वाला काम करते हैं, यानी किसी के घाव पर मिर्ची मसाला लगाने वाला काम करते हैं, नमक लगाने वाला काम करते हैं। और बिल्कुल आज का समय, हम ये नहीं कहते हैं कि परिस्थितियां ठीक हो चुकी हैं, बिल्कुल नहीं, परिस्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। पर ऐसी बिगड़ती हुई परिस्थितियों में किस प्रकार से हमें अपने स्वास्थ्य पर भी संयम रखना है, क्योंकि आज हमारे देश में देखा गया है कि मानसिक तनाव से कितने लोग पीड़ित हैं, साथ ही साथ हृदय के रोग, डायबिटीज़ जैसे रोगों से लोग किस हद तक पीड़ित हैं, और आजकल साइकोसोमैटिक डिजीज़ किस हद तक हमारे समाज को खोखला करती चली आ रही है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करना अति आवश्यक है, लेकिन कौन समझाए कि सोशल मीडिया पर क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि आज कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकथाम नहीं। क्योंकि एक कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का एक बड़ा सा समंदर आपके सामने खोल कर रख दिया है, अब इसमें से कौन क्या कितने बजे क्यों ग्रहण करता है, इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। वैसे आपको बताते चले, अक्टूबर का जो महीना है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे या वर्ल्ड मेंटल पीस डे हम मना रहे हैं, लेकिन ऐसे में मानसिक शांति बनाए रखें तो कैसे। सोशल मीडिया ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन आनंद और एडिक्शन के बीच की एक पतली सी रेखा जो कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। चलिए इस पर आधारित एक बहुत ही बढ़िया आपको बताते हैं। रिसर्च हुआ था कि दिल्ली की एक सेल्स प्रोफेशनल प्रियंका प्रधान रोज सुबह उठते ही खुद को इंस्टाग्राम चेक करने से नहीं रोक पाती थी, और ये उसे एक एनर्जी देता था, ये उसका मानना था, और

आधिकारिक तौर पर उसके दिन की शुरुआत बस अपने मोबाइल से होती थी। एक घंटे से अधिक समय एक तक वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करती रहती थी और उसको स्क्रॉल करने के बाद वो अपने बिस्तर से उठती और दिन के काम शुरू कर देती। ब्रेक के बीच वो दिन के दौरान कुछ मीम्स भेजने के लिए फिर से फ़ोन उठाती और दोस्तों से अपडेट प्राप्त करती। शाम को काम के बाद फिर से फीड के माध्यम से बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने लगती हैं और जब तक वो रात को थक न जाए तब तक वो मोबाइल अपने हाथों से जुदा नहीं करती, अलग नहीं करती। और देखा जाए तो निश्चित रूप से वे अकेली नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया के साथ वो कनेक्टेड है। और क्या ये हमारी भी आदत है? कहीं ना कहीं हमारे में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही घंटी बजे कि हाय ये तो मैं भी करती हूँ या मैं भी करता हूँ। हम सोशल मीडिया पर इतने अधिक निर्भर हैं कि हमें नहीं पता कि इसके बिना क्या करना है। सच में देखा जाए तो हम एक तरह से अपाहिज बन चुके हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप इसका एक उदाहरण है। और अधिकांश लोगों ने बेचैनी महसूस करनी शुरू कर दी और वे नहीं जानते कि इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि हम चाहते क्या हैं यह हमें खुद नहीं पता। आप इसे नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल बात है? वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्मों का अत्यधिक उपयोग हमारे गिरते मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। चलिए आज के इस कार्यक्रम में ऐसी बहुत सारी जानकारी हम लेकर आए हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अकेले रहते हैं और बिल्कुल कहीं ना कहीं अकेलेपन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा आज अधिक से अधिक लोग ले रहे हैं। और केवल अकेलापन ही नहीं, हम तो समझते हैं कि घर में लोग होने के बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और दुनिया की हर वो चीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पर चलिए, कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, पर कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानजनक बनती जा रही है ये समझना भी तो आवश्यक है ना?

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

बजकर 25 मिनट हो चुके हैं। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आज की चर्चा कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया से बढ़ने वाले मानसिक तनाव,

मानसिक रोगों के बारे में और कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो बिल्कुल ये ठोस प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार से आज समाज में सोशल मीडिया के दुरुपयोग से या सोशल मीडिया को यूज़ करने से अधिक उसका इस्तेमाल करने से अधिक इन्फॉर्मेशन लेने से या अधिक से अधिक समय सोशल मीडिया पर रहने से कई प्रकार के मानसिक रोग हमें बिल्कुल परेशान करते हैं। और बिल्कुल पुणे, भारत के पुणे में स्थित मनोवैज्ञानिक तिथि कुकरेजा ने हेल्थ शॉट्स के साथ साझा किया ये बात कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोशल मीडिया ने हमें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने के लिए मदद की है, लेकिन ये हमारे अकेलेपन या हम अकेलेपन का बैसाखी बन गया है। और वे लिखती हैं कि मेरे ऐसा कहने का कारण ये है कि हम अब आत्मचिंतन नहीं करते। हम किसी भी प्रकार के खालीपन को भरने के लिए जल्दी से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने में लगे जाते हैं और उनका अत्यधिक उपयोग चिंता और अकेलेपन के उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है। और वे ये भी लिखती है कि बिना सोचे फीड स्क्रॉल करना, यानी हम बिना वजह कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के वीडियोस को वेरीफाई किए बिना या किसी भी चीज़ को वेरीफाई किए बिना, बिना सोचे समझे हम फीड को स्क्रॉल करने में हमें कोई आपत्ति ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमें कोई रोकने वाला है ही कौन। लेकिन कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि आपको पता भी नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि आप इन प्लेटफॉर्मों पर कई घंटे बिता देते हैं? और खैर, ये एक हानिकारक बात है जो सोशल मीडिया की लत को एक तरह से जन्म देता है। लत यानी हम कह सकते हैं एक एडिक्शन, जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि भाई धूम्रपान मत करो, एक भी सिगरेट लेने से ये कहीं ना कहीं आपके अंदर धूम्रपान की लत को बढ़ाता है, वो एक तरह का एडिक्शन है। शराब मत पियो क्योंकि ये लत को बढ़ाता है। मादक द्रव्य मत लो, ये हमारी लत को बढ़ाता है। उसी प्रकार से सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर उस लत को बढ़ाता है। तिथि कुकरेजा ये भी कहती हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग केवल कमेंट, लाइक और शेयर करने के लिए होता है। ये तत्काल संतुष्टि का एक डोपामाइन रश को जन्म देता है जो हमें हर बार उस पर वापस जाने के लिए उकसाता है, उत्तेजित करता है। लेकिन ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब हम दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करना शुरू करते हैं तो हमारी खुद की धारणा, सेल्फ इमेज प्रभावित होने लगती है। हम क्या हैं, हम कैसा फील करते हैं, ये सब हम नहीं सोचते। बस दूसरों को प्लीज करने में, दूसरे कैसा करते हैं उनके कंपैरिजन में हम अपने मन की शांति को भंग कर देते हैं। पेन मेडिसिन और मैकलिन अस्पताल के शोध के अनुसार, यानी ये रिसर्च के अनुसार, सोशल मीडिया चिंता और अवसाद के सबसे बड़े कारणों में से एक है। और एक और अध्ययन ये भी कहता है, रॉजर्स बिहेवियरल हेल्थ द्वारा किया गया ये एक रिसर्च है, ये देखता है कि कैसे इंस्टाग्राम पर कम फॉलोअर्स होने के कारण बच्चे, यंगस्टर्स डिप्रेशन और खाने के विकारों से पीड़ित है। यानी कहीं ना कहीं अगर आज इतनी कम उम्र वाले बच्चों में डिप्रेशन पाया जाता है तो उसका मुख्य कारण बस यही है कि उनके फॉलोअर्स कम हैं, उनके लाइक्स कम आते हैं, लोग उन्हें देखना कम पसंद करते हैं, हालांकि उनके दोस्तों के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। और ऐसे विचारों से आजकल आपने देखा होगा यंगस्टर्स में भूख मरती जा रही है,
बच्चे खाना कम खा रहे हैं, खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ये एक सीधा

प्रभाव है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर ये एक सीधा प्रभाव है। फिल्टर और केयरफुल क्यूरेशन भी लोगों में एक तरह से फोमो, FOMO, इसका मतलब ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना पैदा कर रहा है। अगर आपको नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द सोशल डायलेमा याद हो, किसी ने अगर देखी हो ये डॉक्यूमेंट्री, तो आपको शायद पता होगा कि आपकी बागडोर आप नहीं बल्कि सोशल मीडिया नेटवर्क है। आप वही देखते हैं जो वे आपको दिखाना चाहते हैं। तथ्य ये है कि आप केवल लोगों को ऐसा जीवन जीते हुए देखते हैं जो आपको भी, लेकिन आपको भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ये समान नहीं है। कई बार हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, कई बार हमारे कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ग्लैमर में है, बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, और हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नोइंगली और या अननोइंगली कहीं ना कहीं हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं। इतना ही नहीं, आज देखा गया है कि सोशल मीडिया आपसी संबंधों को भी किस हद तक प्रभावित करता है। तिथि कुकरेजा कहती है कि निश्चित रूप से ये सच है, यहाँ तक कि जब हम अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताते हैं तो हम केवल अपने सोशल मीडिया फीड के बारे में सोच सकते हैं। हम लोगों के साथ आमने सामने नहीं जुड़ पाते, इसके बजाय हम में से अधिकांश एक अलग दुनिया में ही रहना पसंद करता है। आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन आप स्क्रीन से परे बहुत कम दोस्तों को अपने पास पाते हैं। सोशल मीडिया अच्छा है, पर उसके दुष्परिणाम उससे भी बहुत ज़्यादा अधिक। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार, ये अजीब लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर खराब बातें तेज़ी से फैलती है, और इस बात का प्रमाण आपने कुछ दिन पहले के प्रदर्शनों के माध्यम से देख ही लिया होगा। गाली देना, गाली गलौच करना, गंदी बातें करना, किसी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, किसी को कुछ भी कह देना, ना सोचे ना समझे, और बस जितनी जल्दी से ये आग समाज में फैले, आपको लगता है कि आपने बहुत महान काम कर लिया। इतना ही नहीं, कई बार ऐसी बातें लगातार सुनने से या लगातार देखने से हमारा मन भी उसी दिशा में दौड़ने लगता है। आपको शायद याद होगा, हमारे घरों में कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा होगा कि खाते समय या फिर भोजन करते समय ऐसी चीजों को ना देखें। ये हम नहीं कहते, ये कई सारे ऐसे शोध में पाया गया है कि जो हम देखते हैं, एक तरह से जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार का अन्न हम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार का हमारा मन बनता चला जाता है। और जैसा भोजन हम अपनी आँखों को देते हैं, जैसी बातें हम बार बार सुनते हैं, ये हमारे मस्तिष्क का भोजन है, हमारे दिमाग का भोजन है। तो अगर आप अपने भीतर कूड़ा डालेंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग भी किसी कूड़ेदान से कम थोड़ी रहेगा। 2009 से 2012 के बीच 100 मिलियन से अधिक फेसबुक उपयोगकर्ताओं से 1 बिलियन से अधिक स्टेटस अपडेट का
आकलन करने के बाद ये पाया गया कि

नकारात्मक पोस्ट की संख्या में 1% की वृद्धि हुई है। 2014 में ऑस्ट्रिया में कुछ शोधकर्ताओं ने, कुछ रिसर्चर्स ने पाया कि प्रतिभागियों ने फेसबुक पर 20 मिनट तक स्क्रॉल करने के बाद बैड मूड की सूचना दी, जो कि इंटरनेट ब्राउज करने वालों की तुलना में कम थी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग स्क्रॉलिंग को समय की बर्बादी नहीं मानते। उनको लगता है कि ये अपने आप को इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात हो ही नहीं सकती। यानी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ये हेल्दी है, ये अच्छी बात है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जो लोग 7 या अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उनमें 0 से लेकर 2 प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों की तुलना में चिंता के जो लक्षण हैं, उसकी संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। अब आपको उदाहरण देते हैं, हमारे कई बड़े बुजुर्ग हैं शायद इस बात को ना समझ पाए। यानी इसका मतलब ये है कि आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे कॉमन है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मान लीजिए अगर आपके अकाउंट्स इन सभी पर हैं, आप फेसबुक भी देखते हैं, आप इंस्टा पर स्क्रॉल भी करते हैं, आप ट्विटर भी देखते हैं, आप टिकटॉक भी देखते हैं, साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप पर कई कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं और आप इन सभी पर एक्टिव हैं, यानी इन सभी के प्लेटफॉर्म पर आप सारी चीज़ें देखते हैं और उसे देखकर सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो बस एक एंटरटेनमेंट के रूप में हो, पर आप उसे ग्रहण करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम उपयोग करते हैं सोशल मीडिया का, या हो सकता है कभी कभार आप यूट्यूब पर कुछ देखते हैं या फिर फेसबुक पर बस कुछ मिनटों के लिए, या मान लीजिए आधा घंटा, पौना घंटा आपने उसमें समय निकाला, कंपैरिजन में उन व्यक्तियों की जो मानसिक स्थिति है वो उतनी चिंताजनक नहीं होगी, पर जो लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2016 में किए गए एक और रिसर्च में 1700 लोगों, यानी 1700 लोगों को शामिल किया गया था और इनमें सबसे अधिक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों में अवसाद और चिंता का 3 गुना जोखिम था। कुछ कारणों में ऐसा भी कहा गया कि साइबर बुलिंग, अन्य लोगों के जीवन के बारे में विकृत सोच धारण करना और कई सारे ऐसे मामले शामिल थे। अब आप खुद सोचिए, सोशल मीडिया को इस कदर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह?

हमारा देश एक छोटा सा स्वर्ग और इस स्वर्ग की सुंदरता को हमें बनाए रखना है, हमें स्वस्थ रहना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रह सके। और हर बुधवार की तरह आज हम जुड़े हैं कुछ ऐसी ही बातों को लेकर, बिल्कुल ये हमारे स्वस्थ को लग करवाते हैं

क्योंकि आज कहीं ना कहीं तनाव देश में नहीं पर पूरे विश्व में तनाव दीमक की तरह बढ़ता जा रहा है और उसका कारण कहीं ना कहीं बस यही है कि हम कुछ ऐसी चिंताओं को पाले बैठे हैं जिस पर ना तो हमारा काबू है पर देखा जाए तो बिल्कुल हम इसको काबू में ला सकते हैं क्योंकि हम चाहते हुए भी इस दलदल में अपने हाथों से फंसते चले जा रहे हैं।

सोशल मीडिया के फायदे अनेक हैं पर साथ ही साथ मानसिक तनाव और गलत जानकारियां कई बार हमारे जीवन को एक गंभीर रूप एक गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती। सोशल मीडिया पर अक्सर कई बातें आधी अधूरी तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है और कई बार उसका दुष्परिणाम ये होता है कि कई जानकारियों को लेकर हम अपना मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशंस को हम सर्कुलेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि अगर कोई हमें कोई वीडियो पोस्ट कर देता है, नहीं जानते कि वो सही है गलत है, उसे लेकर हम दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य, नौकरी, समाज से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को लेकर हम चिंताजनक परिस्थितियों को और उकसाते हैं और बढ़ाते हैं। दंगों और सामाजिक तनाव के कारण भी कई बार कुछ ऐसी अफवाहें उठती हैं जो दंगों को भड़काती है और आम नागरिक होने के नाते हम इसमें भी अपना सहयोग देते हैं, ना कि समस्या को शांत करने के बजाय हम समस्या को और उलझाते चले जाते हैं। और आज देखा जाए तो दूसरों की तुलना में, दूसरों से तुलना करने में हमारा जीवन और भी नष्ट होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन की तुलना के साथ साथ हम डिप्रेशन को जन्म लेते हैं। और इसी कारण कई बार हमने देखा है कि घंटों तक रील देखना, घंटों तक वीडियोस देखना, घंटों तक ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशंस को दिमाग में डालने के बजाय, दिमाग में डालने से हम कहीं ना कहीं पूरी नींद नहीं कर पाते। नींद भी आती है तो बहुत ही अनहेल्दी नींद, और देखा जाए तो रात में देर तक स्क्रीन को देखने से मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण नींद ना आने की बीमारी और तनाव बढ़ने की समस्या आज समाज में देखी गई है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल करना या भद्दे कमेंट्स करना बहुत आसान हो गया है और इसका शिकार होने वाले लोग गहरे मानसिक तनाव और अकेलेपन में चले जाते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि लोगों को उनकी लत लग जाती है। जब किसी को उम्मीद के मुताबिक लाइक्स या कमेंट्स नहीं मिलते तो वे उदास और तनावग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी खबर पर अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों से बचे तो कभी भी किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास करने या उसे शेयर करने से पहले उसकी सत्यता या फिर उसकी फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये घटना सही है और क्या मेरे इस फैक्ट को शेयर करने से क्या कोई दुष्प्रभाव हो सकता है, इस बात पर ज़रूर सोचिए। सोशल मीडिया का उपयोग करने का एक समय निर्धारित कीजिए, स्क्रीन टाइम लिमिट ज़रूर तय कीजिए। मानसिक शांति के लिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर आप तनाव को कम करना चाहते हैं तो भाई ये सारी कड़वी दवाएं तो पीनी पड़ेंगी, क्योंकि कड़वी दवाओं से ही इंसान स्वस्थ हो सकता है। और आज के जमाने में बस अगर आप सच में इन सभी तनावों से दूर होना चाहते हैं तो बहुत ही

ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी सोशल मीडिया की कुछ ऐसी गलत बातों को सुनकर, किस प्रकार से आप इन लतों से, इन एडिक्शन से दूर रह सकते हैं, क्योंकि मन को काबू में करना सबसे चैलेंजिंग काम है, पर जो इस फील्ड में मास्टरी कर लेता है ना, वो जिंदगी की किसी भी परिस्थितियों से डगमगा नहीं सकता। और आज का समय बस हमें यही करना है। इसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए।

दोस्तों आज का ये सफ़र बस यहीं तक का था और आशा करते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपको लाभदायक रही होंगी। जाते जाते बस यही कहेंगे कि जब चोट लगती है, जब कोई अपना घायल होता है, जब कोई अपना हमसे बिछड़ता है, दर्द सभी का एक समान होता है। दुख दर्द तनाव धर्म मजहब देखकर नहीं आते, और जो लोग धर्म और मजहब का सहारा लेकर चोट पहुंचाते हैं वे कभी धर्म और मजहब में मानते ही नहीं। दिल में इस भावना को बसाए रखना, एकता एकजुटता की भावना को बनाए रखना, भाईचारे की भावना बनाए रखना, ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां बहुत बहुत ही खराब है, हम सभी से निवेदन करते हैं कि संयम को धारण करे हुए पूजा प्रार्थना के समय को बस हम भक्ति में लगाएं, ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश की जो भी बिगड़ती परिस्थिति है वो जल्द से ठीक हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे। आशा करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ पुनः उपस्थित होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: याद है पंचम, जब भी कोई नई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ कह दिया करते थे,
1: The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court.
0: ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ गए हो पंचम? जिंदगी का ये खेल अकेले नहीं खेला जाता, हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो।

0: ये सुनते हैं समाचार अशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इलियोजितोमा की हालत में सुधार हो रहा है, उन्हें होश आ गया है और अब उन्हें सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं है। ये खबर आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दी। वे रोजबे स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। आज सुबह अपनी पत्नी के समर्थन में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंचे एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने पिछले कुछ दिनों से द्वीप के कई इलाकों में बने तनावपूर्ण हालात पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। पिछले कुछ दिनों की बाधाओं के बाद आज बुधवार को आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक सामान्य हो गईं। ये जानकारी एमसीसीआई के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी ने दी। हालांकि उनके अनुसार फिलहाल नुकसान का आकलन करना जल्दबाजी होगी। लेन देन में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि गतिविधियां लगातार जारी रहने से इस देरी की भरपाई हो सकेगी। उन्होंने मांग की कि कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति खाद्य ऑपरेटरों और कृषि खाद्य क्षेत्र के कारोबारियों को भी दी जाए, क्योंकि ये क्षेत्र 24 घंटे काम करता है। और नवरात्रि के अवसर पर मॉरिशस के कई मंदिरों और संस्थाओं में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के माध्यम से मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जा रही है। कैटरबोन में 2 अलग अलग स्थानों पर रात के विशेष समय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बंगाली परंपराओं के साथ साथ युवा पीढ़ी तक धार्मिक संस्कृति पहुँचाने का प्रयास भी देखने को मिला। हम आपको बता देते हैं कि बैतो की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी मां दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। ये आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है, जिसमें मां दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। वहीं बासे रोड स्थित काली मां मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों हिस्सा लिया और मां दुर्गा के 9 रूपों की लीलाओं का श्रवण किया। मंदिर का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस भर में 10,000 लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हाई स्कूल के छात्रों के समर्थन में रैलियां निकाली। ट्रेड यूनियनों के अनुसार इन प्रदर्शनों में लगभग 4,80,000 लोग शामिल हुए। स्कूलों की स्थिति और पुलिस की कथित हिंसा को लेकर बढ़ते गुस्से के बीच ये आंदोलन तेज हो रहा है, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहीं शनिवार को महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के विरोध में भी प्रदर्शनों की योजना है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। Your news on NBC Play. Continuous
2: music. शाम के 4:04 होने को है। सभी प्यारे श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार और आदाब। और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन और मैं हूं अनुराधा, आपका साथ दूंगी शाम 5 तक आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है
3: दिल से मिले दिल।

दोस्तों आज 14 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर का दिन हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक ऐसी याद लेकर आता है जो दिल को छू जाती है। जी हाँ, हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे फनकार को जिनकी आवाज़ में मोहब्बत भी थी, शरारत भी, तन्हाई भी और ज़िंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज़ भी।

जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आप सबके चहेते बेमिसाल गायक और हर दिल अजीज किशोर कुमार जी की। जी हाँ, किशोरता की सबसे खास बात क्या थी दोस्तों? उनकी आवाज में एक अजीज, एक अजीब सी कशिश थी। कभी शरारत, कभी मस्ती, कभी दर्द तो कभी मोहब्बत की गहराई, और वो हर एहसास को गीत में ढाल देना चाहते थे।

किशोर कुमार साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों में धड़कती है। उनके गाए हुए गीत कभी हमें हंसाते हैं, कभी आँखों को नम कर देते हैं और कभी किसी अपने की याद में हमें खो जाने पर मजबूर कर देते हैं।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Dil se mile dil.
3: दिल से मिले दिल प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम किशोर कुमार के गाए हुए कुछ रेयर गानों को आपका मनोरंजन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें आशा करते हैं कि इन गीतों से आप लोगों का भरपूर मनोरंजन हो रहा है। कहते हैं कि इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन उसकी यादें कभी नहीं मरती, और जब बात किशोर कुमार जी की हो तो उनकी आवाज़ को भला कौन भुला सकता है, कौन भुला सकता है, खास करके हमारे इस गाने के लिए।

और कमाल की बात यह है दोस्तों, किशोर कुमार सिर्फ एक महान गायक ही नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता, संगीतकार और फिल्म निर्माता भी थे। उनकी गायकी की एक खास पहचान थी योडलिंग, यानी कि आवाज़ को अनोखे अंदाज में ऊंचा नीचा करते हुए गाना। यही अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता था। उन्होंने 8 बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार भी जीता।

0: शाम के 4:33 हुए हैं आज दिल से मिले दिल से इस खास सिलसिले में रेडियो मनोरंजन की तरफ से मैं अनुता किशोर कुमार जी को अपने दिल के गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ आइए उनकी यादों को ताज़ा करते हैं उनके ही एक अमर गीत के साथ
1: RM3 Radio.

बस प्यार ही प्यार बली। वक्त का दस्तूर देखिए दोस्तों, 13 अक्टूबर 1987 को किशोर दा इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी याद में हम ये ख़ास प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर सच तो ये है कि ऐसे कलाकार कभी जाते नहीं, उनकी आवाज़ रेडियो पर बजती है, किसी पुरानी याद में गूंजती है तो किसी प्रेमी के होंठों पर सजती है और किसी तन्हा दिल को सहारा देती है। उनके गाए गीतों तो बहुतों को बेहद ही पसंद है और उन्होंने सिर्फ सोलो गीत तो नहीं गाए, आइए उनको सुनते हैं हेमलता के साथ साथ।

और दिल से मिले दिल प्रोग्राम का ये अगला गाना उन तमाम चाहने वालों के नाम जिनके दिल में आज भी किशोरदा के लिए वही प्यार, वही इज्जत और वही दीवानगी है।

किशोर कुमार किशोरदा आप जहाँ भी हो आपके गीत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आपको मेरा शत शत नमन और दिल से प्रणाम। तो आइए एक और प्यारा सा दो गाना हम सुनते हैं अब की बार आशा भोसले के साथ किशोर कुमार की आवाज़। फिल्म है जवानी दीवानी।

जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार आज हमारे बीच मौजूद नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारी दोनों में धड़कती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम से आप लोगों का मनोरंजन भरपूर मनोरंजन हुआ होगा। दिल से मिले दिल प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। ठीक 5 बजे श्री विश्वानंद जी और डॉक्टर शेखर आपका साथ देंगे, सुनते रहिएगा हमारा। और जब नवरात्र चल रही है तो आप सबों को माँ की कृपा बनाए रखें आप सब पर, माँ की अनुकंपा रही है आप सब पर, ऐसे हम कामना करते हैं। चलिए ये अंतिम भेंट आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम हम करते हैं। अब

94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। अनकही एक कहानी

0: परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम् इदं शरीरम्। अर्थात वृक्ष दूसरों के उपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ दूसरों के हित के लिए बहती हैं, और गायें दूसरों के कल्याण के लिए दूध देती हैं। इसी प्रकार यह मानव शरीर भी परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करने के लिए है। श्रोताओं, परोपकार मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आदर्श है। प्रकृति हमें निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देती है। आधुनिक समाज में हमें दूसरों की सहायता करने, निर्धनों को शिक्षा प्रदान करने, ज़रूरतमंदों की मदद करने तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। समाज में व्याप्त स्वार्थ, भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए सहयोग, सहानुभूति और उदारता अत्यंत आवश्यक है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान, समय और संसाधनों का उपयोग जन कल्याण के लिए करेगा, तभी एक समतामूलक, संवेदनशील और शांतिपूर्वक समाज का निर्माण संभव होगा। प्रिय श्रोताओं, महात्मा गांधी संस्थान एवं MBC के संयुक्त सौजन्य से प्रस्तुत कार्यक्रम अनकही एक कहानी में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं विश्वानंद और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे पुनः जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राजशेखर जी, जो अपनी स्वरचित कहानी के माध्यम से हमें जीवन के विविध पहलुओं, मानवीय संवेदनाओं तथा सामाजिक यथार्थ से परिचित कराएंगे। मैं उनका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आइए बिना किसी विलंब के साहित्य और संवेदनाओं की इस रोचक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु बिस्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो किन मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। प्रिय श्रोतागण, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के एक ऐसे महान सम्राट की कहानी जिसने अपनी तलवार के बल पर विशाल साम्राज्य तो स्थापित कर लिया, लेकिन अंततः यह समझा कि सच्ची विजय किसी राज्य को जीतने में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय को जीतने में है। वे थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध एक निर्णायक मोड़

0: बनकर आया। युद्ध भूमि में बिखरे शव, अपनों को खो चुके परिवारों का विलाप और निर्दोष लोगों की पीड़ा देखकर उनके भीतर का विजेता स्वयं से प्रश्न करने लगा, क्या यही विजय है? आज जब पूरा विश्व युद्ध से घिरा हुआ है, ऐसे समय में आइए सुनते हैं सम्राट अशोक की यह प्रेरक कहानी। कहते हैं कि पाटलिपुत्र का विशाल साम्राज्य, जहां भव्य राज दरबार हुआ करता था, चारों ओर मगध के सैनिक शस्त्र हाथों में लिए मुस्तैद खड़े रहते थे। सिंहासन पर लाल वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित युवा अशोक वहीं पर विराजमान था। उसकी आंखों में भीषण अग्नि और चेहरे पर कठोरता थी। मगध के महाराज अशोक और उनका महामंत्री राधागुप्त हाथ जोड़कर उस महान सम्राट के समीप खड़ा था। दरबार में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सम्राट अशोक एक गर्जना के साथ सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। महामंत्री, तक्षशिला के विद्रोहियों का क्या समाचार है? क्या वे भूल गए हैं कि मगध का सिंहासन अब बिंदुसार का नहीं, अशोक का है? राधागुप्त, जो उनका मंत्री था, वह वहीं पर खड़ा था। बहुत ही विनम्र भाव से वह अशोक से कहता है,
1: सम्राट, तक्षशिला के विद्रोही आपके नाम मात्र से भयभीत हैं, किंतु महाराज, राज परिवार के कुछ गुप्त शत्रु और आपके सौतेले भाई अब भी आपके उत्तराधिकार को स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं।
0: संकोच? मगध के राज सिंहासन की ओर उठने वाली हर आंख को बंद करने का साहस रखता हूं मैं। महामंत्री, जो भी मेरे मार का कांटा बनेगा उसे उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह मेरा भ्राता ही क्यों ना हो।
1: महाराज, प्रजा और सामंत आपकी इस कठोरता से भयभीत हैं। लोग चर्चा है कि आपका हृदय पाषाण समान कठोर हो चुका है। लोग आपको चंडाशोक कहने लगे हैं।
0: चंडाशोक, यह नाम मुझे स्वीकार है महामंत्री। सम्राट को प्रिय नहीं, पूजनीय और भय योग्य होना चाहिए। दया और क्षमा निर्बलों के आभूषण होते हैं, एक चक्रवर्ती राजा की नहीं। मगध को एक विशाल साम्राज्य बनाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तभी वहां एक गुप्तचर तीव्र गति से प्रवेश करता है और नतमस्तक होकर कहता है,
1: सम्राट की जय हो। मगध की उत्तरी सीमाओं पर कुछ कबीलों ने कर देने से मना कर दिया है और विद्रोह की चेतावनी दी है।
0: अशोक अपनी म्यान से खड़ग बाहर खींचते हुए चिल्लाता है, विद्रोह! सेनापति को तुरंत आदेश दो, संपूर्ण सेना के साथ उस क्षेत्र को घेर लिया जाए, कोई जीवित ना बचे। उनकी बस्तियों को भस्म कर दो, ताकि भावी पीढ़ियां भी मगध से द्रोह करने का विचार ना कर सके।
1: क्षमा करें सम्राट, परंतु केवल भय से शांति स्थापित नहीं हो सकती। साम्राज्य विस्तार के लिए नीति और संयम भी आवश्यक है।
0: संयम युद्ध के बाद आता है महामंत्री। पहले संपूर्ण भारतवर्ष को मगध के छत्र तले लाना होगा। जो मेरी आज्ञा स्वीकार करेगा वह जीवित रहेगा, जो विरोध करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। अब मगध केवल रक्षा नहीं करेगा, केवल आक्रमण और विजय करेगा। पाटलिपुत्र का मुख्य जो युद्ध कक्ष है, मानचित्र पर मगध की सीमाएं उकेरी हुई थी। सम्राट अशोक जलती हुई मशाल के प्रकाश में

0: मानचित्र को घूर रहे थे। तक्षशिला और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हुए विद्रोह को क्रूरता से दबाने के बाद अब अशोक की दृष्टि पूर्व में स्थित स्वाभिमानी राज्य कलिंग पर टिक गई थी। महामंत्री राधागुप्त और मुख्य सेनापति उनके पास ही खड़े थे। अशोक अपनी उंगली कलिंग के मानचित्र पर रखते हुए कहते हैं, तक्षशिला के विद्रोहियों को उनका उत्तर मिल चुका है महामंत्री। अब कोई भी मगध की शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस नहीं करेगा। परंतु यह क्या, मानचित्र पर यह छोटा सा राज कलिंग यह स्वतंत्र कैसे खड़ा है महामंत्री, कैसे खड़ा है?
1: सम्राट, कलिंग समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य है। सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट बिंदुसार के काल से ही कलिंग ने अपनी स्वाधीनता बनाए रखी है। वे मगध के साथ व्यापार तो करते हैं, किंतु हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करते।
0: अपने महामंत्री राधागुप्त की बात सुनते ही अशोक और भी क्रोधित हो जाते हैं और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहते हैं, जो मगध के समक्ष सिर नहीं झुकाता वह मगध के मार्ग का शूल है। एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन संपूर्ण भारतवर्ष होना चाहिए। कलिंग की स्वतंत्रता मेरी महत्वाकांक्षा पर एक आघात है महामंत्री, एक आघात है। तभी सेनापति राजा अशोक को संबोधित करते हुए कहते हैं,
1: महाराज, कलिंग की थल और जल सेना अत्यंत शक्तिशाली है। उनके सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण देने से कभी नहीं हिचकते। उन पर विजय प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं होगा।
0: सेनापति की बात सुनकर अशोक और गुस्से से भर जाता है। सरल कार्य कायर करते हैं सेनापति, चंडाशोक कठिनाइयों से पीछे नहीं हटता। कलिंग के राजा को हमारा अंतिम संदेश भेजो, या तो मगध का आधिपत्य स्वीकार करें और कर दें, या फिर विनाश के लिए प्रस्तुत रहें।
1: सम्राट, तक्षशिला के रक्तपात के तुरंत बाद एक और विशाल युद्ध का आह्वान। प्रजा और सेना अभी विश्राम चाहती है। कलिंग के साथ युद्ध का अर्थ होगा अपार जन धन की हानि।
0: साम्राज्य विस्तार की बलि वेदी पर रक्त की आहुति देनी ही पड़ती है राधागुप्त। यदि कलिंग झुकता नहीं तो अब मिट जाएगा। सेनापति, मगध के विशाल सैन्य बल को सजने का आदेश दो। हाथियों, रथों और पैदल सेना को कलिंग की सीमाओं की ओर प्रस्थान करने को कहो।
1: जो आज्ञा सम्राट, मगध की सेना कलिंग को ध्वस्त करने के लिए तत्पर है।
0: अशोक मानचित्र पर अपनी तलवार की नोक गराते हुए कहता है, कलिंग का दंभ बहुत शीघ्र दया नदी के तट पर टूटेगा। अब वार्ता का समय समाप्त हुआ, युद्ध की रणभेरी बजाओ।

0: कलिंग की सीमा के निकट दया नदी का तट, सूर्य अस्त हो रहा था और गगन में लालिमा छाई हुई थी। मगध का विशाल सैन्य शिविर लगा हुआ था। ढोल नगारों और युद्ध की रणभेरी से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था। सम्राट अशोक रथ पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। उनके सम्मुख कलिंग की विशाल सेना युद्ध के लिए तत्पर खड़ी थी। और अशोक के पास आकर सेनापति अशोक से कहता है,
1: सम्राट, कलिंग के सैनिक अदम्य साहस से लड़ रहे हैं। वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हमारी सेना को भारी प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है।
0: कलिंग का दुसाहस, कलिंग का साहस मगध के चक्रवर्ती स्वप्न के आगे टिक नहीं सकता। सेनापति, संपूर्ण सैन्य बल को आगे बढ़ाओ। दया नदी के जल को शत्रु के रक्त से लाल कर दो। आज मगध की पूर्ण विजय के अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। भयंकर युद्ध होता है। घंटों के भीषण संघर्ष के बाद शांति छा जाती है। लाखों शव भूमि पर बिछ जाते हैं। संध्या के समय अशोक विजयी मुद्रा में युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के लिए निकलता है और चारों तरफ देखकर हतप्रभ हो जाता है। यह क्या है? यह कैसा सन्नाटा है? सेनापति, यह कौन सी विजय है

0: जहां केवल शव और अश्रु दिखाई दे रहे हैं।
1: सम्राट की जय हो, हमने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली है। शत्रु के 1,00,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और 1,50,000 बंदी बना लिए गए हैं।
0: अशोक के हाथ से रक्त से सनी तलवार छूटकर गिर जाती है और वह हताश होकर कहता है, जय, क्या इसे विजय कहते हैं? देखो उस ओर, एक अबोध बालक अपनी मृत मां की छाती से लिपटकर रो रहा है। वह स्त्री अपने पति के शव के पास विलाप कर रही है। दया नदी का जल अब जल नहीं, निर्दोषों का रक्त बन चुका है। सेनापति, रक्त बन चुका है।
1: महाराज, साम्राज्य विस्तार के लिए यह बलि आवश्यक थी।
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेनापति, यह बलि नहीं, महापाप है। मैंने राज जीतने के लिए लाखों परिवारों को उजाड़ दिया। यह विजय नहीं है, मेरी पराजय है। इस रक्तपात से मुझे क्या मिला? केवल विनाश, चित्कार और अनगिनत आत्माओं की बददुआएं। अब यह चंडाशोक इस क्रूरता को और सहन नहीं कर सकता सेनापति, सहन नहीं कर सकता। कलंक की रणभूमि में छाई भीषण शांति, उसके पश्चात पाटलिपुत्र का राजप्रसाद, दया नदी के तट पर लाखों शवों, माताओं की चित्कार और बिलखते बच्चों को देखकर सम्राट अशोक का हृदय विदीर्ण हो चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु अशोक का अंतर्मन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। रात का अंधकार गहरा हो चुका था और अशोक अपने भव्य कक्ष में अशांत हो टहल रहा था। अशोक बार बार अपने हाथों को देखता था, जैसे उन पर लगा रक्त मिटाने का वह प्रयास कर रहा हो। तभी महारानी कारुवाकी कक्ष में प्रवेश करती है और सम्राट अशोक को संबोधित करती है।
1: स्वामी, युद्ध समाप्त हो गया, मगध की विजय हुई, फिर भी आपकी आंखों में यह भयंकर अशांति और अश्रु क्यों है? आप विश्राम क्यों नहीं करते?
0: विश्राम? कारुवाकी, जब भी मैं आंखें मूंदता हूं, मुझे दया नदी का लाल जल और कलिंग के अनाथ बालकों की रोने की ध्वनियां सुनाई देती हैं। मैंने विजय नहीं पाई, मैंने मानवता की हत्या की है। कारुवाकी, हत्या की है। यह मुकुट अब मुझे तपे हुए लोहे के समान लग रहा है। तभी द्वारपाल आदरपूर्वक आता है और झुककर सूचना देता है,
1: सम्राट की जय हो। द्वार पर एक बौद्ध भिक्षु पधारे हैं, वे अत्यंत शांत और तेजस्वी प्रतीत होते हैं।
0: अशोक अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं, बौद्ध भिक्षुक? अरे, उन्हें तुरंत भीतर लाओ, शायद उनकी वाणी मेरे इस जलते हृदय को शांति दे सके। और तभी सौम्य और शांत मुद्रा में बौद्ध भिक्षु उपगुप्त उनके कक्ष में प्रवेश करता है। उनका आभामंडल अत्यंत शांत और सौम्य है। प्रवेश करते ही वह सम्राट अशोक को संबोधित करता है,
1: शांत हो, शांत हो, मगध के सम्राट, शांत हो जाओ।
0: उपगुप्त को सामने देखते ही अशोक उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे महात्मा, मुझे बचा लीजिए, मेरी तलवार ने लाखों निर्दोषों का जीवन छीन लिया है। विजय का यह दंभ मुझे भीतर से भस्म कर रहा है। मुझे इस पाप से मुक्ति और अंतरात्मा की शांति का मार्ग दिखाइए।

0: मार्ग दिखाइए।
1: उठो सम्राट, पश्चाताप ही पाप से मुक्ति का प्रथम चरण है। जो विजय तलवार और हिंसा से प्राप्त होती है वह केवल विनाश और भय छोड़ जाती है, किंतु जो विजय प्रेम करुणा और धर्म से प्राप्त होती है वही सत्य शांति लाती है।
0: भगवान, जब यह चंडाशोक कभी किसी जीव पर शस्त्र नहीं उठाएगा, मैं अपनी हिंसा और क्रोध का आज से त्याग करता हूं। मुझे उस मार्ग पर ले चलिए जहां केवल करुणा और शक्ति हो।
1: तथास्तु राजन, तथास्तु। अब समय आ गया है कि सम्राट अशोक अपनी तलवार त्याग कर बुद्ध के धम्म की शरण में जाए।
0: और उसके पश्चात चारों ओर धूप अगरबत्ती की भीनी सुगंध, बुद्धम शरणम गच्छामि के मधुर मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। भिक्षुक उपगुप्त के वचनों ने अशोक के हृदय के संताप को शांत कर दिया था। कलिंग के पश्चाताप से उपजी ग्लानी अब एक दृढ़ संकल्प में बदल चुकी थी। अशोक अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर साधारण पीत वस्त्र धारण किए बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे और वे बोलते हैं, आचार्य, कलिंग की भूमि पर बहते रक्त ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया था। उस अंधकार से निकालकर आपने मुझे जो सत्य का प्रकाश दिखाया है उसी मार्ग पर अब मेरा जीवन समर्पित होगा।
1: हे देवानाम प्रिय, तलवार से जीती गई भूमि नश्वर होती है, परंतु प्रेम और अहिंसा से जीता गया हृदय अमर रहता है। क्या तुम स्वेच्छा से हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रस्तुत हो?
0: हाँ गुरुदेव, आज इस पवित्र संघ के समक्ष मैं अपने संपूर्ण राज्य और जीवन को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के प्रति समर्पित करता हूँ।

0: अशोक अपनी अंजलि में जल लेकर संकल्प लेते हैं और बुद्धम शरणम का जय घोष करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आज से मगध साम्राज्य में किसी भी निरीह प्राणी का वध नहीं होगा। मेरे रसोई घर से लेकर संपूर्ण राज की सीमाओं तक जीव हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अशोक के इस आह्वान के साथ ही महामंत्री राधा गुप्त अति प्रसन्न होते हैं। वे कह पड़ते हैं,
1: सम्राट, आपका यह निर्णय केवल मगध ही नहीं अपितु संपूर्ण आर्यावर्त के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इतिहास आपको चंडाशोक नहीं धर्म अशोक के नाम से याद रखेगा।
0: और तभी जो है वहाँ पर बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त भी आते हैं और वे भी अशोक को संबोधित करते हैं।
2: साधु साधु राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य केवल स्वयं को बदलना नहीं अपितु प्रजा को धर्म और करुणा का मार्ग दिखाना है। युद्ध के नगारों का स्थान अब धर्म की पुकार

0: अरलेगी।
1: आचार्य, मगध का राजकोष और मेरी प्रत्येक सांस अब केवल लोक कल्याण, सर्वधर्म संभाव और अहिंसा के प्रचार में समर्पित होगी। मेरी तलवार अब सदा के लिए म्यान में ही विश्राम करेगी। आचार्य, विश्राम करेगी। बुद्ध संघ की शरण में जाने के पश्चात सम्राट अशोक के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। अब दरबार में युद्ध की योजनाओं के स्थान पर जन कल्याण, निर्माण और नैतिक उत्थान की चर्चाएं होती थीं। सम्राट अशोक अपने साधारण वस्त्रों में सिंहासन पर विराजमान होते थे। उनके मुख पर अभूतपूर्व शांति और तेज रहती थी। सामने एक दिन महामंत्री राधागुप्त, महारानी कारुवाकी तथा नवनियुक्त धर्म महामहामात्र उपस्थित थे। तभी अशोक महामंत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, महामंत्री, धम्म घोष का संकल्प केवल वाणी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि मगध की पूरी शक्ति प्रजा की निस्वार्थ सेवा और नैतिक चेतना को जगाने में लगे।
0: सम्राट की जय हो। प्रजा आपके इस नए रूप को देखकर अत्यंत आनंदित है। राज्य की सीमा पर अब भय का स्थान विश्वास ने ले लिया है। बताइए महाराज, धम्म के संवर्धन हेतु आगे क्या आज्ञा है?
1: संपूर्ण साम्राज्य के मार्गों पर छायादार वृक्ष लगाए जाएं, कुएं खुदवाए जाएं और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएं। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी निःशुल्क अस्पतालों का निर्माण कराया जाए। कोई भी जीव चिकित्सा के अभाव में प्राण ना त्यागे। तभी उनकी पत्नी महारानी कारुवाकी भी कहती हैं,
0: स्वामी, आपका यह करुणा भाव संपूर्ण वसुंधरा को तृप्त कर रहा है, किंतु प्रजा तक यह संदेश स्थायी रूप से कैसे पहुंचेगा?
1: अशोक धर्म महामात्रों की ओर देखते हुए कहते हैं, इसके लिए विशाल पाषाण स्तंभों और पर्वतों की गुफाओं पर धम्म के नियम उत्कीर्ण कराए जाए। शिलालेखों पर स्पष्ट लिखा हो, माता पिता की सेवा ही परम धर्म है, गुरुजनों का आदर करो, दासों और भृत्यों के प्रति दयालु रहो और सभी जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखो। राजा अपनी प्रजा को संतानवत समझेगा।
0: जो आज्ञा सम्राट। हम साम्राज्य के कोने कोने में इन शिलाओं को स्थापित करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस धम्म नीति का पालन कर सकें।
1: ध्यान रहे महामात, किसी भी अन्य संप्रदाय या धर्म का अनादर ना हो। सर्वधर्म संभाव ही हमारे धम्म की आत्मा है। चंडाशोक का विनाशकारी क्रोध अब धर्माशोक की अमर करुणा में बदल चुका है। दूर दूर तक फैले जलमग्न मार्ग पर बड़े बड़े जलपोत सजे हुए थे। वह गंगा नदी का तट था, पाटलिपुत्र का विशाल बंदरगाह जो आजकल पटना कहलाता है, जो बिहार की राजधानी है। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलाओं और स्तंभों के माध्यम से मगध में अहिंसा, लोक कल्याण और नैतिक मूल्यों की स्थापना हो चुकी थी। किंतु अशोक की दृष्टि अब केवल मगध तक सीमित नहीं थी। वे संपूर्ण विश्व में शांति और करुणा की ज्वाला जलाना चाहते थे। बंदरगाह पर सम्राट अशोक, भिक्षु उपगुप्त, राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा खड़े थे। अशोक बहुत ही स्नेह और गर्व से अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को देखते हुए कहते हैं,
2: पुत्र महेंद्र और मेरी प्यारी पुत्री संघमित्रा, आज मगध की सीमाओं के भीतर धम्म और शांति का साम्राज्य स्थापित हो चुका है, किंतु भगवान बुद्ध का संदेश किसी एक राज या सीमा का बंधक नहीं है। संपूर्ण संसार अज्ञान और हिंसा के संताप में जल रहा है।

0: पिता अशोक की बात सुनकर पुत्र महेंद्र हाथ जोड़कर कहते हैं,
1: पिताश्री, आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। हम लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए पूर्णतः तत्पर हैं। हम वहां के राजा और प्रजा तक बुद्ध का करुणा संदेश अवश्य पहुंचाएंगे।
0: पुत्री संगमित्रा भी कहती है, हाँ पिताश्री, यह बोधि वृक्ष की शाखा केवल एक वृक्ष का अंश नहीं, अपितु ज्ञान, शांति और अहिंसा का जीवंत प्रतीक है। हम इसे लंका की पावन भूमि पर रोपित कर वहां धम्म का दीप प्रज्वलित करेंगे। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त भी कहते हैं,
1: साधु साधु, हे देवानाम प्रिय अशोक, आपने अपनी संतानों को सांसारिक राज्यों का उत्तराधिकारी बनाने के स्थान पर धम्म का दूत बनाकर विश्व कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। यह इतिहास में अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है।
0: आचार्य उपगुप्त की बात सुनकर अशोक कहते हैं, गुरुदेव, कलिंग के युद्ध में मैंने जो रक्त बहाया था, आज यह धम्म यात्रा उसी महापाप का पश्चाताप और प्रायश्चित है। केवल लंका ही नहीं, हमारे शांति दूत यूनान, मिश्र, सीरिया और कंबोडिया तक जाएंगे। विश्व को शस्त्रों की नहीं, शास्त्र और मैत्री की आवश्यकता है। पिता की बात सुनकर उनका प्यारा पुत्र महेंद्र भी कहता है,
1: हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके द्वारा दिखाए गए इस धम्म विजय के मार्ग को हम सागर पार तक फैलाएंगे।
0: पुत्र महेंद्र का उत्साह देखकर अशोक गदगद हो जाते हैं और जलपोत की ओर संकेत करते हुए इशारा करते हैं, जाओ वत्स, संपूर्ण विश्व को बताओ कि सच्ची विजय दूसरों को पराजित करने में नहीं, अपितु उनके हृदयों को प्रेम से जीतने में है। जियो और जीने दो।
2: गली गली तेरी लाज जली, जियो रे

0: प्रिय श्रोतागण, आपको यह कहानी कैसी लगेगी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें भेजें। सम्राट अशोक की कहानी का केंद्रीय संदेश है कि युद्ध से बड़ी शांति होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अनुभव किया कि रक्तपात से भूमि पर अधिकार तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों के हृदय नहीं जीते जा सकते। युद्ध में विजेता और पराजित दोनों ही पीड़ा झेलते हैं। सबसे अधिक कीमत निर्दोष नागरिकों, बच्चों, माताओं और परिवारों को चुकानी पड़ती है। अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि अपनी भूल को स्वीकार करना और अपने विचारों तथा आचरण में परिवर्तन लाना कमजोरी नहीं बल्कि वास्तविक साहस है। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि जनकल्याण, यात्रियों की सुविधा, मनुष्यों और पशु पक्षियों की चिकित्सा तथा नैतिक मूल्यों के प्रचार के लिए करने का संकल्प लिया। उनका संदेश किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं था, उसमें सभी के प्रति सम्मान, दया, सहिष्णुता और अहिंसा की भावना थी। यही वे मूल्य हैं जिनकी आज परिवारों, समाजों और राष्ट्रों को आवश्यकता है। तो अब समय आ गया है मुहावरों का। पिछली बार के मुहावरे जो पूछे गए थे उसका अर्थ गुरु विश्वास बताइए, लेकिन उससे पहले इस बार के मुहावरे क्या हैं उसको सुन लीजिए। पहला है आंखों का तारा होना और दूसरा है कलेजे का टुकड़ा होना। फिर से सुन लीजिए, पहला है आंखों का तारा होना और दूसरा है कलेजे का टुकड़ा होना। इस पर आप आपस में विचार विमर्श कीजिएगा और आप इसका अर्थ हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पिछली बार के जो मुहावरे थे, देखते हैं कि गुरु विश्वा इन मुहावरों पर कौन सी कहानी लिखकर आए हैं। पहला मुहावरा है दूध के दांत ना टूटना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है ज्ञान व अनुभव न होना या पूरी तरह से समझदार न होना। यदि वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और चले हो बड़े बड़े काम करने।
0: जी, और दूसरा मुहावरा अक्ल का अंधा होना।
1: जी हाँ, इसका भावार्थ है बिल्कुल मूर्ख होना या समझ न होना। जैसे इतना समझाने पर भी वह गलत रास्ता चुन रहा है, सचमुच वह अक्ल का अंधा है। श्रोताओं, इससे संबंधित एक बहुत ही छोटी सी कथा है, इसका रसास्वादन कीजिए। मोहन एक होनहार विद्यार्थी था, लेकिन बुरी संगति में पढ़कर उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके माता पिता और शिक्षक बार बार समझाते पर वह किसी की बात नहीं सुनता। उसके मित्र कहते, मोहन तुम तो अक्ल के अंधे हो, अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुन रहे हो। एक दिन असफलता ने उसे झकझोर दिया, उसने अपनी गलती स्वीकार की, मेहनत शुरू की और अंततः सफलता की प्राप्ति उसको हुई।
0: जी, इस बार भी बहुत छोटी सी कथा जो है उन्होंने सुनाई। आपको मैं बताते चलूं कि गुरु विश्वा जो हैं हिंदी और संस्कृत के महान आचार्य हैं और वे प्रायः जो है हिंदी में अच्छी अच्छी कहानी लिखते हैं, नाटक भी वे लिखते रहे हैं और संस्कृत के तो आचार्य हैं ही, तो क्यों ना लगे हाथ उनसे एक प्रश्न भी पूछ लेते हैं।
1: जी अवश्य।
0: कि गुरु विश्वा, आप यह बताइए कि जहाँ पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि युद्ध छिड़े हुए हैं, वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है?
1: देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि यह पूरी दुनिया, यह वसुधा ही एक परिवार के समान है। पूरा श्लोक तो बहुत से लोगों को पता ही है, अयम निजह परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह पराया

0: यह तो छोटी बुद्धि वालों की सोच है। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो महान चरित्र वाले होते हैं, उनके लिए यह पूरी दुनिया ही एक परिवार के समान है
1: जी।
0: तो प्रोफेसर जी, आपने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा कि वसुधैव कुटुंबकम का यह जो भाव है क्यों आधुनिक युग में बहुत आवश्यक है। देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है आई, आई का मतलब है मैं। तो जब एक व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आई के बारे में, तब उसे क्या प्राप्त होता है? इलनेस। आई से हो जाएगा इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी। उसको ये चाहिए, वह चाहिए, ये सब उसी फेड़ में पड़ता रहेगा
1: जी।
0: लेकिन जब वह वी के बारे में सोचेगा, डब्ल्यू ई मतलब हम, आई से निकलकर हम की ओर जाएगा, मतलब सभी लोगों को एक साथ देखेगा, सभी लोगों की सहायता करेगा, तो वी से हो जाएगा वेलनेस। वेलनेस का अर्थ है कि वह एक स्वस्थ समाज की कल्पना करेगा और उसके लिए काम करेगा। तो आई से निकलकर वी की ओर चलिए, मतलब इलनेस से, बीमारी से निकलकर वेलनेस की ओर चलिए। यही है वसुधैव कुटुंबकम का भाव और उसका भावार्थ
1: जी। और आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम, इसीलिए हम लोग प्रायः जब बात करते हैं तो मैं का प्रयोग बहुत कम करते हैं
0: जी जी।
1: और हम लोग क्या बोलते हैं कि हम वहाँ गए थे, हम खाए थे
0: जी,
1: हमको जाना है ना। मैं या मुझे का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं या हमारी परंपरा में मैं का मतलब है अहंकार, जो कि रावण को था।
0: एकदम सही कहा आपने। और जब हम समाज में जीते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, हम सभी लोगों के लिए जीते हैं
1: जी।
0: उसी को बोलते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण।
1: और जिस अहिंसा की हम बात करते हैं, वह हमारे वैदिक ग्रंथों से निकलकर गौतम बुद्ध, महावीर की परंपरा से होते हुए महात्मा गांधी तक यह अहिंसा जो विचार,
0: अहिंसा परमो धर्म,
1: धर्म यह पहुंचा और जिससे कि पूरा विश्व परिचित हुआ। और इस अहिंसावादी सोच में इतनी ताकत है कि बिना बंदूक के, बिना गोलाबारी के, बिना युद्ध के भी हम युद्ध जीत सकते हैं। यानी जिस समाज में प्रेम और मानवता है, वहीं अहिंसा भी है और वहीं वसुधैव कुटुंबकम की सोच भी है।
0: और शुरू शुरू में मैंने एक श्लोक बोला था, उसकी जो अंतिम पंक्ति थी वह था परोपकारार्थम इदम शरीरम, अर्थात यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है वह दूसरों के कल्याण के लिए
1: बिल्कुल
0: है, सिर्फ हमारे लिए नहीं
1: जी। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा, हमारी जो उत्पत्ति हुई है वह व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हम सामाजिक होते हैं। और यदि हम अपने परिवार, समाज और देश की भलाई के लिए यदि कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं हमारा यह जो जीवन है वह निरर्थक है।
0: निरर्थक।
1: इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सभी की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए
0: अवश्य।
1: तो अब प्रिय श्रोतागण, आपके लिए एक आमंत्रण संदेश भी है कि यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसने आपको प्रेम और मानवता के मार्ग की ओर अग्रसर किया हो, तो अपनी उस अनकही कहानी को हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आप अपनी कहानी professorrajshekhar@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी कहानी दूसरों के जीवन में भी आशा, संवेदना और सकारात्मक परिवर्तन का दीप जला सकती है। चयनित कहानियों को हमारे इस कार्यक्रम में प्रसारित करने का अवसर भी मिल सकता है। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और सभी लोगों से प्रेम और मानवता के साथ बात करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।
0: इन अमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजशेखर जी। श्रोताओं, कहा गया है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, अर्थात जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रता और करुणा रखता है, ममता और अहंकार से मुक्त रहता है, सुख दुख में समान भाव रखता है तथा क्षमाशील होता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। यह श्लोक हमें प्रेम, करुणा, विनम्रता, समभाव और क्षमाशीलता का महत्व समझाता है। आधुनिक समाज में जहां ईर्ष्या, अहंकार, भेदभाव और असहिष्णुता

बढ़ रही है, ये गुण अत्यंत आवश्यक है। हमें जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। सुख दुख में संतुलित रहकर तथा दूसरों की गलतियों को क्षमा करके हम पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक जीवन में शांति, सद्भाव और मानवीय एकता स्थापित कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ आज के हमारे इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का समापन हो रहा है। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राजशेखर को आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले सप्ताह हम पुनः एक और प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनने तथा अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आप सभी श्रोताओं के प्रति हम हृदय से अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

14 अक्टूबर 2026 बुधवार का दिन इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के कुछ इलाकों में कर्फ्यू के बावजूद कल रात फिर अशांति की घटनाएं हुई। पुलिस ने कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें 15 नाबालिग शामिल।

हैं। 43 लोगों को आज अदालत में पेश करने के बाद फिर से पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कर्फ्यू को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, किन लोगों को बाहर निकलने की अनुमति है और जिन इलाकों में पाबंदी नहीं है वहां आने जाने के क्या नियम हैं। पुलिस प्रेस ऑफिस ने इन सवालों का जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों की अशांति के बाद देश में व्यापारिक गतिविधियां काफी हद तक सामान्य हो गई हैं। संस्थाने खाने पीने की

0: मिल रही हैं। तेलुगु समुदाय भगवान वेंकटेश्वरा की आराधना में 40 दिनों का व्रत रख रहा है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत हो गई। वैशाली जिले में हुए इस हादसे के बाद कई लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी रहा। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। कर्फ्यू के बावजूद देश के कुछ इलाकों में कल रात फिर अशांति की घटनाएं सामने आईं। हालात को संभालने के लिए पुलिस को कई जगह कार्रवाई करनी पड़ी। इन घटनाओं के सिलसिले में कुल 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में से 43 को हिरासत में रखा गया है। इन्हें आज अलग अलग जिला अदालतों में पेश किया गया और फिर से पुलिस सेल में भेजा गया। देश के कई इलाकों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद कल रात कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई, जिसमें देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश में सरकार के फैसलों की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: Il gagne l'information de plusieurs sources concordantes qu'il y a un groupe d'immun.
2: विभिन्न स्रोतों से जानकारियां मिली हैं कि इस हिंसा के पीछे कुछ लोग हैं जो लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। उनका मकसद है देश में तनाव को बढ़ावा देना ताकि शांति और व्यवस्था भंग हो। पुलिस के अनुसार इन लोगों को ड्रग टस्कर पैसा देकर ये काम करवा रहे हैं। वे खुद को पुलिस की कार्रवाइयों से खतरा महसूस कर रहे हैं। पुलिस को पता है कि ये लोग कौन हैं। पुलिस जरूरी कदम उठा रही है। पुलिस और SMF देश की एकता को भंग करने वालों के खिलाफ तैयार हैं। पुलिस ताकत सख्ती से पेश आएगी। कई झूठे वीडियो और मैसेजेस प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनसे और अशांति फैल रही है। मैं मीडिया से जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की मांग करता हूँ कि वे अपनी खबरों की अच्छी तरह जांच करें। प्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है शांति बनाए रखने में, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब झूठी खबरें फैलाना नहीं है। मैं रेडियो और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने वालों से अपील करता हूं, चाहे वे राजनीति से हो या प्रेक्षक, कि वे अपनी बातों की गंभीरता पर ध्यान दें और परिणामों पर अच्छी तरह सोच विचार करें। अपनी बातें शांति फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि हर कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून का पालन करते हुए प्रयोग करे। मैं सभी मॉरिशनों से कहता हूं कि पुलिस कर्मी भी मॉरिशन हैं, उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं। एक पुलिस कर्मी ने एक ऐसी करतूत की जिसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए मॉरिशस के सभी पुलिस कर्मियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस जनता की सेवा के लिए है, वो अशांति फैलाने के लिए नहीं बल्कि हर एक मॉरिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। मेरा संदेश स्पष्ट है, हम आग लगाने वालों को पहचानेंगे जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। लोगों ने गैर कानूनी काम किया है, किसी को भी हमारे देश की सामाजिक शांति को भंग करने नहीं देना चाहिए।
1: Mais nous pas capable de rendre toute la police Maurice responsable. La police est au service de la population. Elle n'est pas là pour faire des ordres, elle est là pour assurer la sécurité chaque Mauricien. Mon message est clair et sans concession. Nous pouvons identifier les incendiaires, les gens qui peuvent agir contre l'intérêt de nos pays. Et je peux bien répondre. Du monde qui ne fait un acte illégal pour subir une conséquence bien lourde de cette action antipatriotique méritée. Pas les personnes attaquent notre tissu social et la paix dans nos pays.
0: Khabron ko aage badhate hain. देश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए कल गुरुवार 15 और शुक्रवार 16 अक्टूबर को मॉरिशस के सभी

0: सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक नर्सरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले स्कूलों के साथ साथ तकनीकी और प्रशिक्षण केंद्र भी बंद रहेंगे। इनमें आईटेट, MITD और MIE की ऑनलाइन क्लासेस भी शामिल हैं। वहीं मॉरिशस, रोड्रिक्स और अगालीगा में इन दो दिनों के लिए तय ग्रेड 4, ग्रेड 5 और NCE की परीक्षाएं आगे के लिए टाल दी गई हैं। नई तारीखों की घोषणा बाद में होगी। हालांकि SC और HSC की अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाएं तय टाइम टेबल के अनुसार ही होंगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्कूल दोबारा कब खुलेगी इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। इस बीच महिला समानता और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि कल गुरुवार 15 अक्टूबर को सभी नर्सरियां भी बंद रहेंगी। कर्फ्यू को लेकर लोगों के मन में कई सवाल। आखिर कुछ ही इलाकों में कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, इस पर हम थोड़ी देर में एक बार फिर पुनः लौट कर आएंगे। पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद आज देश में व्यापारिक गतिविधियां काफ़ी हद तक सामान्य हो गई हैं। मॉरिशस चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव दृष्टि सिंह रामदेनी के मुताबिक पिछले दिनों लेन देन में कमी आई है, लेकिन आर्थिक नुकसान का अभी सही अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी। उन्हें उम्मीद है कि कामकाज जारी रहने से इस कमी की भरपाई होगी। साथ ही उन्होंने मांग की है कि खाने पीने की चीज़ों के उत्पादन से जुड़े उद्योगों को भी कर्फ्यू के दौरान काम करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस सेक्टर में 24 घंटे काम होता है। देश के कई इलाकों में पिछले दिनों से जारी तनाव के बीच MSM नेता प्रवीण जगन्नाथ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज सुबह अपनी पत्नी कोबिता जगन्नाथ के समर्थन में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात पर ये प्रतिक्रिया दी। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी कोबिता जगन्नाथ आज तीसरी बार पूछताछ के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन पहुंची। मामला फरवरी 2025 में छापेमारी के दौरान दो सूटकेसों से बरामद 114 मिलियन रुपए से जुड़ा है। इसी मामले की जांच के सिलसिले में FCC के अधिकारियों ने आज उनसे एक बार फिर पूछताछ की।
1: करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अफसरों ने कोबिता जगन्नाथ के साथ नए सिरे से पूछताछ की। फरवरी 2025 में माई हॉलीडेज लिमिटेड कंपनी के दो अधिकारियों के यहां छापे के दौरान जब्त किए गए 4 सूटकेसेस में पाए गए 114 मिलियन रुपए के मामले में ये पूछताछ की गई। तीसरी बार उनके साथ पूछताछ की गई है। उनके साथ उनके वकील भी थे।
2: L'enquête là fin avancé beaucoup, mais comme moi je disais, c'était une longue enquête. Nous pas pour finir les derniers jours, 2 sessions avant, une autre session aujourd'hui. Nous prenons encore dans les autres sessions de travail, que prenons la question que vous posez et Madame Jagnat pourrait venir.
1: दिन के दौरान वे FCC के मुख्यालय से रवाना हुई। किसी और तारीख पर उन्हें फिर से बुलाया जाएगा।
0: एलर्जी तोमा की सेहत को लेकर राहत की खबर। उनकी हालात में सुधार हो रहा है, उन्हें होश आ गया है और अब सांस लेने के लिए मशीन की मदद की जरूरत नहीं है। ये जानकारी आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने दी। वे रोजबेल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री का बयान। इस पर पेश है ये रिपोर्ट।
3: Là, nous avons nouvellement annoncé, avant mon venir, mon jeune médecin, elle dit, inassisé, aujourd'hui. Il fallait assiser, inassisé. Elle ne s'est pas venue dire à moi, qui m'a dit, ben, j'ai une photo pour montrer au public, j'ai besoin de confiance, qu'il peut assiser, et j'ai besoin de comprendre ben, l'opération aussi dangereuse, aussi importante que ça, ou pas capable de permettre n'importe qui s'en aller à le micro du vendredi pour demander qu'il m'a été senti. Et là, ça aspire, comment on appelle ça, une confidentialité des patients, et deuxième infection. Le visage comprend, il y a une grande opération. Le visage garde bien comment il était. Laisse-le finir par lui-même, dit quand il commence à causer, quand il commence à marcher. La publique, et surtout son papa, son maman, et puis, je finis de dire qu'il nous cause à nos enfants, nous nous aide nos enfants, tout ça. Là. Et son Michel causé. Parce qu'il y avait une plus meilleure preuve que ça, si je ne pas trust nous. Mais là, voilà une bonne nouvelle qui a cessé. Tout ça, l'appareil, il tirait. L'appareil, il fait tirer.
0: अपनी किताबों के जरिए लोगों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए

0: प्रेरित करने वाले मशहूर लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिव खेरा इंदरू मॉरिशस में हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीर राम गुलाम से मुलाकात की। शिव खेरा इस शुक्रवार एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें मुश्किल हालात का सामना करने और अपनी क्षमताओं को पहचान कर आगे बढ़ने पर चर्चा होगी। साह ओनो कुणाल गोजी करुणा लालू।
1: लेखक, वक्ता और लीडरशिप के विशेषज्ञ शिव खेरा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता पर आधारित अपनी पुस्तक यू कैन विन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ शिष्टाचार के नाते भेंट की। इस अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के अनुसार युवा देश के विकास के लिए एक अहम ताकत हैं। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया ताकि भविष्य के नेताओं को तैयार किया जा सके।
2: There was a study done on 1,000 companies and it was found that 60% of these companies fired Gen Z within first few months of hiring. Communication skills, attitude, integrity, taking for granted, team spirit. People who have succeeded and they have sustained success and maintained goodwill, they have lived by this one principle and that is, I shall always give more than what I get. To my family, to my organization, to my company, to my customer, and to my country. You live by this principle, you become the competition, you have no competition.
1: Shiv Khera is Shukravar, 16 October ko La Pirog mein Mauritius Institute of Directors ki pehel par aayojit ek sammelan ka sanchalan karenge, jiski theme hogi Turning Setbacks into Comebacks, The Winner Mindset, यानी असफलताओं को वापसी की सफलता में बदलना विजेता की सोच।
0: रोजवेल के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम। आज दोपहर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल की नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जल्द ही करीब 100 डॉक्टरों और 60 इमरजेंसी स्पेशलिस्ट नर्सों की भर्ती की भी घोषणा की। डायबिटीज को लेकर मॉरिशस के लिए एक अच्छी खबर। देश इस बीमारी से प्रभावित लोगों का प्रतिशत देश में इस बीमारी से प्रभावित लोगों का प्रतिशत कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मैगजीन द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक साल 2009 में डायबिटीज की दर 23.3% थी जो 2021 में घटकर 19.9% रह गई। प्री डायबिटीज के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। खास बात है ये है कि महिलाओं में डायबिटीज की दर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। माधवी जगन्नाथ, गीता नारायण।
3: न्यूकोव स्थित ये विशेष क्लिनिक उन 5 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में से एक है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज के उपचार और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फौजी पिखाली कहते हैं, मुझे चोट लगी थी, अस्पताल गया तब पता चला कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, तब से सभी इलाज करवा रहा हूँ, आँखों की जाँच आदि करवा रहा हूँ। ये बीमारी आमतौर पर वयस्क अवस्था में धीरे धीरे विकसित होती है। इसमें रक्त में शक्कर यानी ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा होता है। डॉक्टर मोहम्मद यासिया उजिया कहते हैं, अगर किसी को 8% से ज्यादा डायबिटीज का पता चलता है तब उन्हें डायबिटीज सेंटर भेजा जाएगा जहां उन्हें ज्यादा गहन सेवा दी जाएगी जिससे उनका डायबिटीज नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्हें उनके इलाके के हेल्थ सेंटर में भेजा जाएगा। प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में हाल में ही प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मॉरिशस में 12 वर्षों के दौरान मधुमेह के मामलों में 3% की अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि हालिया सर्वे में टाइप 2 डायबिटीज घटकर 19.9% तक पहुंच गया है। पहले ये 23.3% था और प्री डायबिटिक के लिए भी ऐसा ही है। 2009 में ये करीब 24.9% था और 2021 में किए गए सर्वे में ये 15.6% थी।
4: Donc là aussi, nous trouvons une stabilisation et ensuite une réduction de la prévalence des diabètes.
3: चिकित्सा के क्षेत्र में मिली ये उत्साहजनक सफलता आपसा इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों के लिए भी प्रेरणादायक है। ये संगठन 3 वर्षों से ज्यादा समय से टाइप 2 डायबिटीज के खिलाफ

0: लड़ाई में जुटा हुआ है। अफसा इंटरनेशनल की अध्यक्ष ओद्रे अर्ज कहती हैं, हमारे यहाँ सकारात्मक नतीजे देखे जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वे अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सजग हैं। मॉरिशियनों को जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज खामोशी से फैलने वाली बीमारी है। इसके सिम्टम्स नजर नहीं आते और हमेशा इस जाल में लोग फंस जाते हैं। जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, जटिलताएं शुरू हो जाती हैं। समय रहते जांच करवा लेनी चाहिए। उचित उपचार और सही देखभाल से मरीजों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
1: डायबिटीज़ को काबू में रखना और इससे होने वाली गंभीर परेशानियों से बचना, इसी मकसद से मॉरिशस में एक नई पहल शुरू हुई है। गैर सरकारी संस्था ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ लोगों को बेहतर खान पान और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक करेगी। लक्ष्य है साल 2035 तक डायबिटीज़ के मामलों में 5% की कमी लाना। इसके लिए संस्था स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम करेगी और उनकी सेहत से जुड़ी ज़रूरतों को समझने के लिए अध्ययन भी करेगी। आत्मसंयम और मन की शुद्धि का एक पवित्र पर्व। मॉरिशस में तेलुगु समुदाय इन दिनों भगवान वेंकटेश्वर की आराधना में लीन है। भगवान विष्णु के इस स्वरूप की उपासना के लिए श्रद्धालु 40 दिनों तक व्रत रखते हैं और पूजा पाठ के साथ अपने जीवन में अनुशासन और सादगी का पालन करते हैं। देश भर के मंदिरों में हर दिन प्रार्थनाएं हो रही हैं, जहां भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। आस्था की ज्योत, भक्ति का संगम और नई पीढ़ी तक पहुंचती सदियों पुरानी परंपराएं। नवरात्रि का आज चौथा दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना का दिन। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मॉरिशस में भी इन 9 दिनों के दौरान मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं में पूजा पाठ का वातावरण है। कैटरबोन में 2 संस्थानों पर रात के समय विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बंगाली रीति रिवाजों के अनुसार दुर्गा पूजा के साथ युवा पीढ़ी को देवी मां की कथाओं और धार्मिक संस्कृति से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। ये परंपरा पिछले 47 वर्षों से चली आ रही है। बैतूल की त्रिमूर्ति सोसाइटी इस वर्ष भी माँ दुर्गा भवानी के सम्मान में 9 दिवसीय श्री श्री दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है। यह आयोजन बंगाली परंपरा पर आधारित है, जिसमें माँ दुर्गा का स्वागत परिवार में लौटने वाली बेटी के रूप में किया जाता है। इस भव्य आयोजन की तैयारियाँ जून महीने से ही शुरू हो गई थी।
2: हम लोग बंगाल मतलब कलकत्ता के है, वेस्ट बंगाल, और हम लोग कलकत्ता में हमारे बड़े पूर्वज लोग आए थे, उसी परंपरा से ये दुर्गा पूजा चल रहा है। हमारी दुर्गा पूजा पूरा बंगाली विधि से, और दूसरी बात ये कि ये दुर्गा पूजा तंत्र शक्ति से और तंत्र विधियों से होता है। तंत्र विधि से मतलब ये कि हमारी जो देवी हैं, दुर्गा जो हैं, क्या वो महाकाली क्या वो दुर्गा जी हैं, वो सब तंत्र शक्ति से ही होता है। और इस शारद नवरात्रि में दुर्गा जी के हम लोग पूजा चंडी रूप में मानते हैं, मतलब कि चंडिका के रूप में। ऐसे दुर्गा माँ को सभी लोग माँ कहते हैं, लेकिन हमारे बंगाली परिवार में दुर्गा जी बेटी बन करके पिता के घर आते हैं। अभी वो हमारे साथ रहेंगे 10वीं तक, फिर 10वीं के बाद वो अपने पति के घर में जाएंगे। तो जाने से पहले जितनी भी सेवा हो सके विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं।

0: इस वार्षिक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मां दुर्गा की आराधना के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह और भक्ति देखने को मिली।
1: क्योंकि छोटी से लेकर आज तक हम माँ की सेवा करते हैं और जैसे कि आपको पता है वो माँ के रूप नहीं आती, वो बेटी के रूप आती है, तो हम उसकी स्वागत धूमधाम से करते हैं और हर साल यही वेट करते हैं कि वो आए और हम उसकी सेवा करें।
0: सायंकालीन कार्यक्रम में पारंपरिक बंगाली ढुली नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। युवा कलाकारों ने ढाक नामक पारंपरिक ढोल की गूंज के बीच सुगंधित धूप से भरे

0: पात्रों के साथ ये भक्तिमय नृत्य प्रस्तुत किया। वही बासेरोड स्थित काली माँ मंदिर में भी नवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया। पिछले 20 वर्षों से मंदिर में श्रद्धालु पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। रात में आयोजित विशेष कथा में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और माँ दुर्गा के नौ रूपों की लीलाओं का श्रवण किया। मंदिर का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पहुँचाना है। इसके साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति का पर्यावरण के अनुकूल निर्माण, प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देता है।
1: जो युवा जनरेशन बा ओकर मजा आंको हाजे करने जैसा कि हमने के मजा आवे के संगे हम मूर्ति बनाए के हम हमने के गांव के मजा के रोशन करे के मंदिर के हमने के लाज जाता नौजवान जो अब उठता छाग मजा ई परंपरा स्वीप करे के।
0: दो स्थान आस्था की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां, लेकिन उद्देश्य एक ही है, नवरात्रि की परंपराओं को जीवंत रखना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना।

0: नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना का दिन। भारत की मंदिरों में पूजा अर्चना और मां दुर्गा के जयकारों के बीच भक्ति का माहौल है। वहीं भव्य पंडालों में कहीं महाभारत के प्रसंग जीवंत हो उठे हैं तो कहीं दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों की झलक देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल तक आस्था, कला और संस्कृति के अनोखे रंगों के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है।
1: नवरात्रि का आज चौथा दिन समर्पित है मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा को सृष्टि की रचना करने वाली देवी माना जाता है। उनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की मान्यता है। मां के इस स्वरूप को शक्ति, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माना जाता है। भारत के अलग अलग मंदिरों में आज श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में भी नवरात्रि की रौनक है। पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। नवरात्रि के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। कोलकाता के सोल्ट लेक इलाके में इस बार महाभारत की कहानी जीवंत हो उठी है। इसी ब्लॉक के दुर्गा पूजा पंडाल को महाभारत के प्रसंगों के आधार पर सजाया गया है। कलाकारों ने इस प्राचीन महाकाव्य के दृश्यों को अपनी कला के जरिए फिर से पेश किया है। खास बात यह है कि यहां दुर्गा पूजा के आयोजन के 50 साल पूरे हो रहे हैं। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा की तैयारी को एक कलाकार ने बेहद छोटे आकार में समेट दिया है। अगरतला के कला शिक्षक बिजॉय देवनाथ ने करीब 700 माचिस की तीलियों, आइसक्रीम की लकड़ियों और कागज की मदद से मां दुर्गा की छोटी सी प्रतिमा तैयार की है। उनकी ये कला बेकार पड़ी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देती है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी पंडालों की सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है। यहाँ एक पंडाल को कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का रूप दिया जा रहा है। मंदिर की खास बनावट और ऊंचे शिखरों की झलक इस पंडाल में देखने को मिलेगी। अंकोर वाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अब केरल, जहाँ नवरात्रि की एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। इसे बोम्मई गोलू कहा जाता है। इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों और रंग बिरंगी गुड़ियों को सीढ़ियों की तरह सजाया जाता है। कहीं 3, कहीं 5 तो कहीं 11 स्तरों पर सजी ये मूर्तियां पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के जीवन की झलक पेश करती हैं। ये परंपरा कई परिवारों में पीढ़ियों से चली आ रही है।
0: और सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि भारत के बिहार राज्य में एक दर्दनाक नाव हादसा। गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की जान चली गई। हादसा कल रात वैशाली जिले के रागोपुर इलाके में हुआ, जब करीब 20 लोगों को लेकर जा रही एक नाव नदी में पलट गई। सभी लोग एक गांव में भोज में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि लापता लोगों की तलाश के लिए आज भी बचाव अभियान जारी रहा।

पते मौसम के हाल की ओर आम हालत। मैस्केनीज के दक्षिण में पाया जाने वाला जोरदार एंटी साइक्लोन हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर बनाए रखा है। रात से कुछ बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और सटपातों पर वर्षा होगी। दोपहर बाद में आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। विशेषकर दक्षिणी लगूनों में रात के दौरान समुद्र की स्थिति में सुधार आएगी। न्यूनतम तापमान सेंटीप्लाटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंटीप्लाटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 6:11 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:39 पर।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन है, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। धनी लेन सैपुल में 40 साल की 40 साल की श्रीमती हेमा देवी दोमा पैदाश्रम जूतन और जिन्हें अनुष्का के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके पति अनुप दोमा के घर सैपुल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमरो एट 10:30 AM। सुल्फिरिनो नंबर चार वाकुआ में 82 साल की 82 साल की श्रीमती बिंदुमती सिपरसाद पैदाशनाम रामानंद सिंह और जिन्हें मिला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे जागीसर लेखराज सिंह के घर सुल्फिरिनो नंबर 4 वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11 AM। राय रोड कांटों बेल्डो पॉम्पलेमूसेज में 79 साल की कुमारी जयवंती मनबुदुना जिन्हें सतवंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर कांटों बेल्डो पॉम्पलेमूसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 11 AM। तिरासी साल की 83 साल की श्रीमती पवित्रा देवी बहुरन पैदाशनाम बेचू किशन दयाल और जिन्हें सविता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को दिन के 1 बजे लाशा पेलौदों दिलियनसन बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगाद की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन ऑन फ्राइडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। गुरुवार 15 अक्टूबर को दिन के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक क्यूपिप में और आसपास के इलाकों में पपेनेसी रोड, रूट जॉर्डन, रू कोसिनी, रू रेमोनो, कॉलेज लेन, रू डॉक्टर एडवर्ड्स, रू विक्टोर लामोक, रू सगायतन जुवाल, rue Naz, rue Émile Sozier, rue Sir William Newton, rue Raffray, morcellement Piat, mais bhi bijli ki supply mein katauti lai jayegi. Aur Sola October ko din ke 12 baje se lekar 3 baje tak Floréal mein aur aaspaas ke ilakon mein Avenue King George, Avenue John Kennedy, rue Roger Pesani, rue Esquette Bell, flat Silver Clouds, flat Les Ternans, résidence de l'intendance, British High Commission, flat Karimji, mais bibijili ki supply me katoti lai jayegi. Shukravar 16 October ko सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक फ्लोरियल में और आसपास के इलाकों में रू एनेस्ट आरेल, रू लुसियन दे शाजेल, फ्लैट हेस्केट हाइट्स में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

6:35 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं आर एम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उषा कौर यहाँ पर और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम। जी हाँ, नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा से प्रार्थना हम करते हैं कि देश, हमारे जो देश है, हमेशा शांति, एकता और भाईचारा बना रहे। और क्या कहें, जय माता दी। कुछ खूबसूरत गाने आप लोगों के लिए हमने तैयार

0: वो प्यास नहीं थी
1: जब तुम म्यूजिक उड़ेल रहे थे जिंदगी में और हम सब ओक बढ़ा के मांग रहे थे तुमसे। प्यास अब लगी है जब कतरा कतरा तुम्हारी आवाज पे जमा कर रहा हूं।
0: क्या तुम्हें पता था पंचम कि तुम चुप हो जाओगे और मैं तुम्हारी आवाज ढूंढता फिरूंगा।

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: रात के 7 बज चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ आरएम फ्री रेडियो और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 9 बजे तक और आप भी साथ निभाइएगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर है 4028070, आप फ़ोन कर सकते हैं और मैसेजेस आप कर सकते हैं 1525062000। धन्यवाद आप साथ दे रहे हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं लेकिन हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। हार मान लेना, जी हाँ, कभी कभी ज़रूरी है। और वैसे हम अभी नवरात्रि के पावन पर्व को मना रहे हैं, तो माँ दुर्गा की तरह अपने अंदर हिम्मत जगाएं और विश्वास रखें कि अच्छे दिन फिर ज़रूर आएंगे।

14 मिनट हुए हैं जी। हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं यजना और उनके पति देव। चलिए साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और ये गाना चल पड़ा आपके नाम शान की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: 7:22 हुए हैं। जहां श्रोता 16 अक्टूबर को हम मनाएंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म दिवस। जी हाँ, सीता और गीता, शोले और भगवान जैसे फिल्मों में उन्होंने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। अभिनय के साथ साथ शास्त्र नृत्य और उनकी खास पहचान है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी को जन्मदिन की ढेर सारे शुभकामनाएं हम देते हैं और उनके सभी फैंस जो उनको बेहद पसंद करते हैं। और यहाँ पर हम गाना चलाएंगे लता जी की आवाज़ में और ये गाना खासकर अमृता जी के लिए जो रहती हैं विलनुआ और इस समय हमें सुन रही हैं। साथ देने के लिए धन्यवाद आपको। गाना जाता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए।

सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। कानून और व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर नागरिक कानून का सम्मान करे और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करे। हमें ऐसा देश बनाना है जहां हर इंसान बिना किसी डर के जी सके, बच्चे सुरक्षित हों और हर घर में खुशी ही खुशियों हों। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलाने जा रहे हैं अगला गाना मनोज जी के लिए जो रहते हैं सुयाग का, और इस समय हमें सुन रहे हैं गाना उनके लिए और उनके बेटे अरुण के लिए।

उसके लोग होते हैं। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, चाहे हमारा धर्म या भाषा अलग हो, तभी शांति का जन्म होता है। आइए अपने देश को प्रेम और भाईचारे से सजा

श्रोताओं, घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है अपनों के प्यार से। कभी एक मीठी बात, कभी एक मुस्कुराहट और कभी किसी की बात धैर्य से सुन लेना। चलिए अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं फरीदवी जी के लिए, जो इस समय हमें सुन रहे हैं फ्रॉम काठोबोन। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हमारे देश की सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब का भी फर्ज है। अफवाहों से बचें, जिम्मेदारी से बात करें और ज़रूर पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
1: कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी, न तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। मैं क्या बताऊं कि बहता दरिया जब आ रहा था तो जा रहा था।

श्रोताओं, रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब हम जीतने से ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर किसी का दिल रख लेना भी प्यार होता है। अपने रिश्तों को समय और सम्मान दें।

कि हर परिवार में खुशहाली हो, हर बच्चा सुरक्षित रहे और हर इंसान को इज्जत मिले। माँ हमें इतनी शक्ति दे कि हम मुश्किल समय में भी सच्चाई और दया का साथ ना छोड़ें।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, धन्यवाद। माँ दुर्गा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने देश की शांति और एकता को बनाए रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: घड़ी मिला लीजिए, समय मॉरिशस में रात की ठीक 9:04 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस।
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
4: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

देवी और सज्जनों, प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अजय प्रताप सिंह सितालू का प्यार भरा नमन स्वीकार। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। रात के 9:05 हो रही है। आज है बुधवार की रात, बुधवार 14 अक्टूबर साल 2026। और आजकल हम नवरात्रि मना रहे हैं। 9 दिनों और नवरात्रि तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों और नामों का गुणगान कर रहे हैं। तुम कहेंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो प्रिय श्रोताओं, दुर्गा नवमी के संदर्भ में विशेष एक विशेष कार्यक्रम दुर्गा महिमा अभी से लेकर रात के 10 बजे तक, और 10 बजे होगा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। तो चलिए एक साथ मिलकर हम माँ दुर्गा का नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं। शक्ति स्वरूपा है दुर्गा मैया। दुर्गा मैया से प्रार्थना करते हैं कि जितने भक्तों ने व्रत धारण किया हुआ है और जितने भी भक्त ने अपने घर में दुर्गा माँ की स्थापना की है, तो आपकी पूजा, आपका व्रत सफल हो। जय माता दी, जय माता दी, जय अम्बे मैया।

नवरात्रि हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है जिसमें माँ दुर्गा और उनके नौ दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि दो शब्दों से मिलकर बना है, नव यानी कि नव और रात्रि यानी कि रातें। नवरात्रि के नौ दिन माँ दुर्गा की शक्ति, भक्ति, साहस, ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें शक्ति, सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद देती है। और माँ दुर्गा के नौ रूप इस तरह से, माँ शैलपुत्री, फिर माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री।

देवी सज्जनों प्रिय श्रोताओं, हम आपको बताते चलें कि हमारे देश में 8:30 बजे से रात को अभी कर्फ्यू लागू है, कल सुबह के 5 बजे तक, यानी कि किसी को भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और बेशक आप जानते हैं कि इन दिनों कितने हिंसा से भरी घटनाएं हुई है, सो हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना घटे और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और कहते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना भक्त अपने तरीके से करता है, हर भक्त अपने तरीके से माँ की आराधना करता है, और माँ तो भक्ति की प्यासी है, और कैसे माँ की पूजा किया जाए। सो सुबह उठकर पूजा की तैयारी करें, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें, पूजा की जगह को साफ करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति लगा सकते हैं, माँ को लाल फूल और लाल चुनरी अर्पित करें यदि उपलब्ध हो। पूजा की सामग्री है लाल फूल, दीपक और घी या तेल, अगरबत्ती या धूप, फल और मिठाई, रोली या कुमकुम, अक्षत और साफ जल, और इनमें से जो सामग्री उपलब्ध हो उसी से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माँ को प्रणाम करें, हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का ध्यान करें और मन में कहें, हे माँ दुर्गा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद माँ को जल, फूल, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें और माँ के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं, अगरबत्ती या धूप भी जला सकते हैं। दीपक जलाते समय माँ का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता दूर हो। दीपक और अगरबत्ती को सुरक्षित जगह पर रखें और माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दुंग दुर्गाय नमः, यह माँ दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंत्र है, या फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वो साधिके शरणिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, यह माँ की स्तुति का एक प्रसिद्ध श्लोक है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या 108 बार माँ का मंत्र का जाप कर सकते हैं। संख्या से अधिक मन की श्रद्धा महत्वपूर्ण है। पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। आप यह प्रसिद्ध आरती गा सकते हैं, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। आरती करते समय माँ का ध्यान करें और परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। माँ को भोग लगाएं।

मां दुर्गा को फल मिठाई या घर में बना शुद्ध शाकाहारी भोजन अर्पित कर सकते हैं जो महाप्रसाद बन जाता है। और भोग लगाते समय प्रेम से बोले, हे माँ, मेरे द्वारा प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया गया भोग स्वीकार करें। कुछ देर बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटें। अंत में माँ से प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने पर हाथ जोड़ कर कहें, हे माँ दुर्गा, जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें कृपया क्षमा करना। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और बुरे विचारों को दूर करें। हमें अच्छे कर्म करने की बुद्धि दें और हमारे परिवार पर अपना कृपादृष्टि डाले रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।

ऐसे मां दुर्गा को हमारा शत-शत नमन है, शत-शत प्रणाम है। और मां दुर्गा जो है उसके बहुत ही दिव्य गुण हैं, और मां दुर्गा को शक्ति, साहस, प्रेम, करुणा और धैर्य की देवी माना जाता है। मां के नौ रूप हमें जीवन में अच्छे गुण अपनाने और बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। और मां दुर्गा केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि ममता, दया और क्षमा का भी प्रतीक है। करुणा और दया के सागर है दुर्गा माँ। और शक्तिशाली होना मां दुर्गा अपार शक्ति का प्रतीक है। वे हमें कठिनाइयों से लड़ना, कभी हार न मानना सिखाती है। मां दुर्गा साहस और निडरता, मां हमें डर का सामना करना और सत्य के रास्ते पर चलना सिखाती है। दया और करुणा के सागर है दुर्गा मैया। मां अपने भक्तों के प्रति करुणामयी मानी जाती है। हमें भी दूसरों के दुख को समझना चाहिए। मां दुर्गा ममता, मां जैसा प्रेम दिखाती है, इसीलिए से मां कहते हैं। मां दुर्गा अपने भक्तों को अपनी संतान के समान स्नेह देने वाली माता है।

क्षमा की देवी है दुर्गा मैया। माँ के गुण हमें दूसरों की गलतियों को समझने और मन में द्वेष न रखने की प्रेरणा देती है। धैर्य, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और धैर्य का प्रतीक है। वे सिखाती है कि कठिन समय में भी धैर्य धारण करना चाहिए। माँ सच्चाई का साथ देने वाली है। माँ दुर्गा को अधर्म और अन्याय का नाश करने वाली देवी माना जाता है और माँ का प्रेम हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करना सिखाता है। माँ महागौरी शांति और पवित्रता का प्रतीक है और हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना सिखाती है। बुद्धि और विवेक की देवी है दुर्गा मैया और माँ जो है शक्तिशाली देवी है। इस विश्व की माता है दुर्गा मैया, स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश माँ दुर्गा की पूजन करते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कथा यह संदेश देती है कि बुराई और अहंकार के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। रक्त बीज और महिषासुर जैसे दानवों का नाश करके माँ दुर्गा ने धर्म की स्थापना की है। जय हो दुर्गा मैया, जय हो अंबे गौरी।

मत्सरीय का नाश करती है और माँ दुर्गा जो है उन्होंने बहुत से राक्षसों का नाश किया है और राक्षसों में से महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन और दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जो कभी भैंसे का रूप धारण कर सकता था। उनके अत्याचारों से देवता परेशान थे, तब माँ दुर्गा ने उसे युद्ध करके उसका वध किया। फिर शुंभ, शुंभ एक शक्तिशाली असुर था, माँ दुर्गा ने उससे युद्ध किया और उसका भी वध किया। निशुंभ, निशुंभ शुंभ का भाई था और माँ दुर्गा ने युद्ध में उसे हराया। फिर चंड, चंड शुंभ का सेनापति था, माँ के उग्र स्वरूप से उनका संहार हुआ। मुंड, मुंड भी शुंभ का सेनापति था, माँ के काली स्वरूप ने चंड और मुंड का वध किया। इसी कारण देवी को चामुंडा नाम से भी जाना जाता है। फिर रक्तबीज एक ऐसा असुर था जिसके रक्त की बूंद धरती पर गिरने से उसके जैसे कई असुर पैदा हो जाते थे। तब माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप धारण करके रक्त धरती पर गिरने से रोककर उसका संहार किया। और धूम्रलोचन शुंभ का एक शक्तिशाली सेनापति था, देवी ने अपने दिव्य प्रभाव से उसका नाश किया। और माँ दुर्गा के रूप में वो महिषासुर का वध करती है, माँ चामुंडा के रूप में माँ दुर्गा चंद्रमुन का नाश करती है और माँ काली के रूप में रक्त बीज का नाश करती है और माँ चंडिका महागौरी के रूप में शुंभ और निशुंभ सहित अनेक असुरों का नाश करने वाली है। देवी के विभिन्न रूपों और असुरों की कथाएं का वर्णन देवी महात्य दुर्गा सप्तशती में मिलता है। अलग अलग धार्मिक परंपराओं में कुछ विवरण भिन्न हो सकते हैं, पर माँ दुर्गा जो है उनके बहुत सारे गुण हैं। जो भी साधक, जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहता है।

प्रिय श्रोताओं, इस समय आप रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुन रहे विशेष कार्यक्रम दुर्गा नवमी के संदर्भ में दुर्गा महिमा। और आप माँ के भक्त हैं, सो आपको जानना चाहिए कि माँ को क्या प्रिय लगता है। माँ के प्रिय फूल है लाल फूल, लाल गुलाब, गेंदे का फूल और कमल का फूल। और माँ दुर्गा के प्रिय रंग है लाल, पीला और नारंगी। और माँ दुर्गा को प्रिय भोग है, उनके प्रिय भोग है सेब और अन्य फल, खीर पूरी, रोट और लड्डू, नारियल, शहद, मिठाई, हलवा पूरी और चने। और नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर कई भक्त हलवा पूरी और काली चने का भोग भी लगाते हैं। और माँ दुर्गा को प्रिय पूजा सामग्री है लाल चुनरी, लाल फूल, घी का दीपक, कुमकुम और रोली, अक्षत यानी साबुत चावल और नारियल। इन सामग्री से अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। और माँ दुर्गा का प्रिय मंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। और माँ दुर्गा जो है, माँ की भक्ति में केवल फूल और भोग की महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे आचरण को भी बहुत महत्व दिया जाता है। सच्चाई, दया और करुणा, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का सम्मान, अहंकार से दूर रहना, सभी के प्रति प्रेम रखना और अन्याय का विरोध करना। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पूरे भक्ति के साथ अगर माँ का गुणगान करेंगे तो आप चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों न हो, माँ कोई न कोई रास्ता अवश्य दिखाती है। इतनी दयामयी, इतनी करुणामयी है हमारी अम्बे मैया।

देवी और सजनों प्रिय श्रोताओं इसी मां दुर्गा के भजन के साथ ही नवरात्रि के संदर्भ में विशेष कार्यक्रम दुर्गा महिमा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सो जितने भी भक्तगण हमें सुन रहे हैं, आपका व्रत सफल हो, आपकी पूजा सफल हो और यह नवरात्रि सभी के लिए मंगलकारी हो और हमारे देश में आजकल जो समस्याएं चल रही है वो समस्याएं दूर हो। हे अम्बे मैया, हम सब की रक्षा करो, हम सब पर दया करो। जय अम्बे माँ, जय अम्बे वा, जय माता दी। सो इसी भजन के साथ ही यह कार्यक्रम संपन्न होता है। 10 बजे हम प्रस्तुत करेंगे अगला प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। सुनते रहिए प्रेम से MBC रेडियो मॉरिशस और MBC रेडियो मनोरंजन।

0: सगजालो घड़ी मिलाई बखत रात के ठीक 10 बजे बाद तू सुना तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और प्रस्तुत बातलो के मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
5: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
6: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
0: सब संगत आलो के आजे प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते यह तो मन पसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो मनोरंजन एगो एएम मोड पर एगो एफएम मोड पर चला था एफएम मोड पर है रेडियो मनोरंजन और आईएम मोड पर है रेडियो मॉरिशस आज है बुधवार की रात 14 अक्टूबर साल 2026 भोजपुरी का प्रोग्राम अभी से लेके रात के 11 बजे तोरा मन करता कोनो भी भोजपुरी

Gitsina kita number wa gumaya. Kadzewode with the with sank, Kadzewode with the with sank. All of one passenger, push for a git mangya ja. Ipelga ganaratna padarat or bandhu bhai ki awaz mein. और गीत की बोला आंख मारी रहा रेहाना हसन नानी के तेरे गीत चलता खासम खास आप रहे रन फिनिक्स कर सब संगत यार परिवार के नाम चल एक साथ सुने हैं गीतवा आंख मारी रहा

0: सगसे लोग हमनी थोड़ा याद दिला दे जा कि हमनी के देश में कर्फ्यू लागल बा आज रात की 8 बज के आधा से कल फजर के 5 बजे ले यानी कि कोई के थोड़ी बाबी घर से बाहर जाए कि अगर पुलिस थोड़ा पकड़ ले तो थोड़ा पर इलामान पे करे कि 50,000 और कई साल तक सब जेल बितावे भी ऐसा काम नहीं करिया जानते हैं कि आजकल कौन चीज हुआ था अपने के देश में और बस मांग कर अब सकी ये सब हिंसा ये सब कमती हो जाए हमने के देश को सुंदर देश है तो नए चेहरा लड़ाई झगड़ा करे कि नए चेहरा हिंसा करे कि हमने के देश को बहु जातीय देश है मॉरिशस हमके पूर्वज लोग जय मनाई इलाका से आलो वंश और हमेशा से जब से हम छोटा है तब हम जाने लगे हमने के देश में प्रेम की भावना है अपनापन और भाईचारा की भावना है तो ये भाईचारा प्रेम की चला हमेशा कायम रखे के और बेशक कभी रात के समय भोजपुरी तरह का प्रोग्राम सुने तो वह तगड़ा गीत तो हर खातिर जोली छोकरी और अभी को संगत या बकर से मिले चल हेलो और जब भी तेरे फोन कर मैंने राजो की बोली मौका कमती कर दिया प्लीज हेलो
1: हेलो
0: हाँ प्रमीला जी नमस्ते कैसे समाचार अगला गीत क्या कर खाती प्रमीला
1: गीत हमने खाती रहा सब परिवार
0: खाती आज घरे भी रहला तो आजू के बोली मां जोर बाप प्रमीला

0: please.
1: Thank you.
0: नहीं इको करा था जाना था इको करा था यहाँ पर ये की डिफिकल्टी होला
1: बता दे लीजिए
0: आले आले बोले आज के दिन कैसे बिताल प्रेमिला
1: अच्छा से
0: पूजा जा हुआ था दुर्गा माँ की आराधना
1: माँ के दर्शन करे
0: हाँ अभी शिवाला में बुनेरी पूजा हो जाता ना कर्फ्यू के कारण
1: बहुत बने थोड़ा देर हो गया
0: कौन कौन पर इसे 5 बजे से शुरू होता या सांझ के 8 बजे रे पास की 8 बजे की आधा से हाँ माँ माँ दुर्गा से प्रार्थना सबको आ जाए मॉरिशस में दुनिया भर में और सबको एक साथ हाथ जोड़ के माँ दुर्गा हे माँ दुर्गा सब बुद्धि ज्ञान द ताकि एडमिशन काम नहीं करी हमने के देश ऐसा जोड़ी देश बा स्वर्ग जैसा देश हमने की देश हमने की देश पर ये चोरी बा हाँ नहीं तो आज कलयुग है ना प्रेमिला का कर बा पर ऐसा काम नहीं करे कि चेहरा हमनी माँ दुर्गा से बस सब कोई किस बुद्धि ज्ञान दे कि चल के हम की देश अभी फिर
1: से प्रार्थना करत है जा जे बीमार हो गए लंज के से हत्ता हो गए तो अच्छा हो यान
0: हाँ
1: ऐसा देजूद नहीं
0: हाँ जी हाँ हाँ प्रेमिला तगला गीत तोहर का तेरा सब परिवार के नाम दुर्गा मैया अले चलाओ अब सर थोड़ी समय में अभी गीत क्लास से करवा गीतवा के बाद अले डाल दियो सब फिक्र नहीं करिए हाँ हे जगदम्बे मैया गौरी ब्रदर्स अले बहुत धन्यवाद और अगला गीत चलाते सर रिहाना जो रह नोदाम गीत और खाते तो सब परिवार के नाम राफिक मोहित हवन तायक से हेलो जी भाई अबू वाकवा से सुना था आत्मा राम चाचा एक गीत और नाम ललिता कुशल चाची ललिता कुशल त्रियोले से वंजा और है गीत चली रीता सीतालू और रेणुका भैरव के नाम दुगो बहिन बहुत प्यार से उनके सुना था और है गीत चलावत इस संजय बिहारी और पत्नी और बेटा पतो बेटी दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम और जी फैमिली के सब सदस्य लोग के नाम जो हम की रात के सुना था और है गीत हमने चलावती से सब जोरी जोरी छोकरी लोग के नाम और जो लड़का लोग आजकल एससी और एचएससी के एग्जाम्स कर रहा था खास कर गीत तोरो नाम जोरी छोकरी से प्यार कर रहा चल एक साथ सुना जा गीत तोरा

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

जगत जननी माता के आजकल हमने गुणगान करते सा हर घर में हर मंदिर में हर शिवालय में गांव में शहर में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मॉरिशस के हर एक कोना में मां दुर्गा के गुणगान होता कहे कि आजकल हमने नवरात्रि के व्रत धारण कर ले सा नौ दिन और नौ रात ले मां दुर्गा के पूजा करते सबको अपन अपन तरीका से पूजा करेला कोई मीठा खा के व्रत धारण करेला कोई सब्जी खा के कोई खाली पानी पी के व्रत धारण करेला तो माँ दुर्गा सबके व्रत सफल करी और सबके पूजा सफल हुई माँ हे दुर्गा मैया शक्ति दे ताकि हमने आगे बढ़ब सा और जीवन में कुछ न कुछ नया जरूर करब सा और माँ दुर्गा जो अपन भक्त के पुकार अवश्य सुनीला तभी प्रमिला कुछ समय पहले फोन करने रहन दुर्गा माँ के भजन मंगले हुआ तो दुर्गा माँ के भजन चलावते सर सब भक्त जन लोग के नाम जो माँ दुर्गा के व्रत रख रहे नौ रात्रि और नौ दिन तक माँ के गुणगान करियन सर जय माता दी जय माता दी जय माँ पहाड़ा वाली जय माँ शेरों वाली जय हो

रात के 10:20 हुआ था भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलता रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर अगला गीत हरीश नारायण के नाम रहे मिडलैंड सुगर माता जी खातिर नतराज राम को नोवेल फ्रांसे और देवेन नदीवाला रहे वैनकूवर कनाडा गीत सब संगत चालू के नाम

जिंदगी में काम के बहुत ही महत्व हो, चाहे कोनो भी काम हो, काम छोटा ना बड़ा रहेला, काम करबा त आमदनी मिलेला, पैसा आवेला हाथ में, और जब पैसा आवेला त सब अपन परिवार के देखभाल करे, अपनों देखभाल करे, त काम करवा रे काम करवा। बहुत ही प्यारा सन गाना और गीत हम चाहते इस वीरेन के नाम। हाय वीरेन, गीत और कहते तो और घरोली और दुगो लेकर खातिर, और साथ में है गीत चली सैंतोबे एसएसएस कॉलेज के सब अध्यापक, नॉन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, वहाँ के रेक्टर, वहाँ के लेकर लोग खातिर बहुत बहुत प्यार से, स्पेशली मिस दीना टीना, मिस केट और मिस रोशनी, मिस बानू के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। एंड विदाउट फॉरगेटिंग मिस्टर विहापेन, मिस्टर लक्ष्मण, मिस्टर ओसाई, मिस्टर अपाया और सब अपाया के परिवार के नाम, अपाया के और बेटा का तीर भी ये चलावत ही जा, काम करवा रे काम करवा।

तू ही हमार जान तू ही जमाल कुजू रात के पौने 11 बजे था और एमबीसी रेडियो पर सुना तो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चल रहा रोज की लेंदी से लेके दिमास ले रात के 9 से 11 बजे ले केवल एमबीसी रेडियो पर और हम के साथ देखा थे बहुत बहुत धन्यवाद अगा गीत बुझावल हम बुझीला रामभा राम तोहल के गावल गीत है और गीत चली ये सब संगत के नाम से हमने के साथ जुड़ल हवन जा और पाई से हवन नंदा शोभा हवन बॉम्बे मुझसे आशा जानू कोतेज से का सब परिवार के नाम और है गीत चली हेमा के रस्य के घर वाला विजय खतीर और तीन को लेकर बा और बेशक ये गीत चलाती से जितना कोई भी रात के काम करता पुलिस विभाग में हवन से फायर सर्विसेज में जितना पंपिये लोग एसएमएफ लोग पुलिस लोग काम करे था अभी रात के वक्त सबकी सुरक्षा खातिर तक खसम खास है गीत लोग के नाम जितना ड्राइवर दोस्तों भी सुना था और बेशक जैसे कि जान तो अभी कर्फ्यू लगल बा उनके देश में तो बहुत बहुत तालीबी नहीं कर लो तो मैं कहे कि खाली सर्विस एसेंशियल से की ट्रावेसी हुई जैसे ला पुलिस बा डॉक्टर लोग बा नर्सिंग ऑफिसर लोग बा मीडिया बा ये लोग सके रात के ठीक करे पर बाकी सब लोग के जहाँ घर में रह के कल फजीर के पाँच बजे ले ठीक बा और बेशक बुझावल हम बुझीदा रंभा राम तोल गावल गीत है और एक चलते सब भोजपुरी लवर्स के नाम जितना कोई भोजपुरी गीत कुछ सुन के खासम खास सुनन चिटंकी ये तो और खतील इसका से तो और बेटी तो और दमादों के नाम सब चिटंकी परिवार के नाम है गीत चलता और है गीत खासम खास हमने चला सब ईश्वर शोभन की ओर से उनकर पत्नी और कर लेकर सब शोभन परिवार के नाम और है गीत चलावत ऐसा जितना कोई खुशिया भोजपुरी गीत सुने के और लोग के नाम बुझावल हम बुझीला

संगतेलो कोयल बिना बगिया न बोले दिनू वीरमाला देवी वीरमाला दिनू के गावल हरी गीत के संगे भोज छुईतर का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से हबीब उनके साथ दे रहा जा बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 11 बजे में 4 मिनट बाकी भाई 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए और 11 बजे सुन बजा निर्मलि से प्रोग्राम सुनहरे पल और फिर रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे रे सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने जाए से बड़े बता दे रहा जा कि समय मॉरिशस में कर्फ्यू लागू कल बा और कर्फ्यू चली कल फजर के 5 बजे रे तो घर में से नहीं निकल गया 5 बजे से पहले फजर के अपन घरों में रहिए 5 बजे के बाद फजर के सकबा अपन घर से निकले ऐसे शांतिपूर्वक हमने के देश शांति में रही अमन में रही हमने के देश में सब अच्छा काम होए स्वर्ग देश देशा इस देश के हमने के जना सब कोई की रक्षा करे की सब कोई की परम धर्म है अपन देश के रक्षा करे की तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करब सर कि जो 9 दिन और 9 रात की पूजा हुआ था सबके शक्ति दे और ये हमने के देश के कल्याण ही कल्याण हो जय माता दी। हमने की अर्थल की मुलाकात हुई अब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे एमबीसी रेडियो मॉरिशस पर तो और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दे और जी प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको के प्यार भरा नमस्ते जय माता दी नमस्ते बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल गॉड ब्लेस।

नमस्कार, आप जुड़ चुके हो सुनहरे पल के साथ और मैं हूं नीलमणि। जिंदगी कभी हमें हंसाती है, कभी आजमाती है और कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से एक नई कहानी शुरू होती है और हर रात अपने दिन को याद करने का वक्त देती है। आज की रात कुछ ऐसे नगमों के नाम जो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी को जीना भी एक कला है।

इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब चीजें अपने हिसाब से नहीं होती है, मेहनत के बाद भी नतीजा देर से मिलता है और कभी अपने ही इरादों पर सवाल उठने लगते हैं। ऐसे वक्त में एक बात याद रखिए, हर मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती है, कभी कभी बस एक छोटा सा कदम और थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है। तो चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो मन में नई उम्मीद जगाए।

खुशी के लिए हमेशा किसी बड़े मौके का इंतजार क्यों करें? रात की चाय, परिवार के साथ दो पल, किसी पुराने दोस्त का फोन या पसंदीदा गाने की धुन, कभी कभी इतना ही काफी होता है। जिंदगी की भाग दौड़ हमें अक्सर उन छोटी खुशियों को नजरअंदाज करने में मजबूर कर देती है जो हमारे आस पास होती है, हम उसे भूल जाते हैं। तो आज अपने दिन की एक ऐसी बात याद कीजिए जिसने आपके चेहरे पर मुस्कान

0: कुछ लोग कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान के शौक बदल जाते हैं,
1: लेकिन संगीत का जादू तो देखिए,
0: सालों पुराना गाना भी आज के दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। उम्र चाहे जो हो, दिल में सीखने की इच्छा, मुस्कुराने की वजह और सपने देखने का हौसला रहना चाहिए। आखिर जिंदगी का हर दौर अपने साथ कुछ नया लेकर आता है, तो क्यों ना आज रात एक दिलकश गीत के साथ मुस्कुरा ही देते हैं।

आज की रात का पैगाम बस इतना सा है, जिंदगी को सिर्फ गुजारिए मत, उसे महसूस भी कीजिए। जो बीत गया है उससे सीखते हैं, जो आसपास है उसकी कदर करते हैं, और जो आने वाला है उसके लिए उम्मीद रखिए। हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका है। मैं हूं नलमनी, आपके साथ थी सुनहरे पल में। तो अपनी जिंदगी के नगमे गाते रहिए और सुकून भरी नींद लीजिए। शुभ रात्रि।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: M3 Manoranjan Radio.
1: Your kind of music, all day, all night.

0: एनबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या

सर्कस। हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।